आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातः कालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: संत कबीर कहे छथि, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु प्राप्त करब कतेक दुष्कर अछि, ई एहि कथन सँ स्पष्ट। गुरु तखने प्राप्त भ सकै छथि जखन कि मनुष्य अहंकेर त्याग कऽ दिया। शीश दिए कहबा सँ महात्मा कबीरक यह अभिप्राय छनि जे शिष्यकेँ गुरुक प्रति पूर्ण समर्पण भाव हेबाक चाही, तखनहि शिष्य गुरुसँ किछु प्राप्त कऽ सकै छथि। एकठा आर संत कबीर कहै छथि, जब मैं था तब गुरु नहीं, गुरु है तो हम नाही।

0: प्रेम गली अतिसा करी, या में दो न समाही। जावत स्व अथवा अहंकार परित्याग नहीं कह देल जाय छ, ताबत गुरुक कथन में शंका वा संदेहक पूर्ण संभावना बनल रहे छ। श्रवणेन्द्रिय द्वारा ओ ग्रहण त कैल जाय छ, किंतु मनः पटल पर ओ स्थायी नहीं भ सके छ। गुरुक कथनक प्रति अस्ति नास्तिक द्वंद्व मन में बनले रहे छ। एहना स्थिति में शिष्यक श्रम त व्यर्थ होइत ही अछि, गुरुक प्रयास सेहो पानि में चल जाय छ। तैं शिक्षणक प्राचीन पद्धति में गुरु के सर्वोच्च स्थान देल जाय छल, आ हुनका सब किछु बुझबाक प्रशिक्षण आरंभ सँ शिक्षार्थी के देल जाय छल। तत्वान्वेषी के त स्व केर त्याग करब परमावश्यक अछि, कारण तत्व चिंतनक प्रक्रियाक आरंभे स्व वा अहंकार त्याग सँ होइ छै। केओ सिद्ध पुरुष छलाह, हुनका संग में पारस पाथर रहन। पारस पाथरक संस्पर्श सँ कुधातु स्वर्ण में बदल जाय छै। पारस पाथर ओ नुका कर रखथि, ककरो ज्ञात नहीं रहे जे हिनका संग में पारस छैन। शिष्यो लोकन के नहीं बुझल रहन, कोना ने कोना एकटा हुनक निकट केर शिष्य के ज्ञात भ गेलै जे गुरुजी के संग में पारस पाथर छैन, किंतु कतौ छैन कहाँ छैन से ओकरा नहीं बुझल रहे। ओ सतत एही चेष्टा में रहे जे कोनहुना गुरु सँ ओ पाथर लऽ लेल जाय। ओ गुरुक विश्वास पात्र बनबाक चेष्टा करय लागल, गुरु प्रसन्न भेलखिन। एक दिन शिष्य मनक बात हुनका कहलकनि, गुरुजी हमरा पारस पाथर चाही। गुरु पाथर देबा लेल तैयार भ गेला, लोह पेटिका दिस इंगित करैत बजला, ओ पेटी उठा लो। शिष्य पेटी उठा लेनि, पेटी में ताला लागल छल, चाभी नहीं छले, ताला तोड़बाक उपक्रम होमय लागल। शिष्य के शंका छले जे गुरुजी ठक त नहीं रहला अछि, कारण जो एही पेटी में पारस पाथर रहते तखन त ई पेटी सोनाक बनि गेल रहते। ताला टूटल, ओहि में पुरान वस्त्र में लपेटल छल पारस पाथर, ओहि में सब पाथर बाहर कय शिष्य के दैत गुरु बजला, पाथर वस्त्र में लपेटल छल तैं ई पेटी स्वर्णमय नहीं भ सकल। ब्रह्म आ जीवक संयोग हेबा में वा गुरु शिष्य में संबंध स्थापित करय में स्व अथवा अहं ओहिना बाधक होइ छै, जना पारस पाथर आ लोहक बीच संपर्क हेबा में ई वस्त्र। जँ पारस वस्त्र सँ आवृत्त नहि रहैत तँ पारसक संपर्क सँ लोह पेटिका सोनाक बनि गेल रहतैक। आध्यात्म चिंतन में स्व केर त्याग अनिवार्य होइ छै। गुरु शिष्य संबंध सेहो तखने सुदृढ़ होइ छै जखन कि शिष्य स्व केर त्याग कऽ पूर्ण समर्पण भाव सँ गुरुक समक्ष तत्वज्ञान प्राप्त करबा लेल उपस्थित होइ छै।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है सिंचाई कब करें, कैसे करें और कितना करें। जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।
2: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ कृषि चर्चा में हम सब एहन विषय पर चर्च करब जकर आवश्यकता प्राय सब फसिल में होइत अछि। ओना एखन गर्मीक मास चल रहल अछि, एहन समय में गाछ वृक्ष सब के सेहो बेसी पानिक आवश्यकता होइत अछि। त आउ किसान भाई लोकनि, आइ कृषि चर्चा में सिंचाई कखन आ कतेक मात्रा में करी एहि संबंध में विस्तार सँ चर्च करी। फसिल में सिंचाई एकटा एहन कृत्रिम प्रक्रिया अछि जाहि में फसिल के गाछ सब के वृद्धिक लेल खेत के माटि में नमी बना कऽ राखल जाइत अछि। सही समय, उचित मात्रा

0: आ सही विधि सँ कयल गेल सिंचाई खाली फसिल के बहुत गुना उपजा मात्र नहीं बढ़बैत अछि, एहि सँ जल संसाधन सभक सेहो बचत होइत अछि। फसिल में सिंचाई कखन करी? कोनो फसिल में सिंचाई के समय सदिखन फसिल के अवस्था, माटिक नमी आ मौसम पर निर्भर करैत अछि। सिंचाई के लेल किछ खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। क्रांतिक अवस्था, फसिल में किछ एहन चरण होइत अछि, एहिमे पानि के कमी भेला पर फसिल के उपजा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ैत अछि। जेना उदाहरण के लेल, गहूम के फसिल में जखन ताजमूल कॉर्न रूट फूल एवा काल में वा दाना भरैत काल में पटौनी बड्ड बेसी आवश्यक होइत अछि। ठीक एहिना धानक फसिल में रोपनी सँ लऽ कऽ बाइल आवत धरि खेत में पानि के बेसी मात्रा में आवश्यकता होइत अछि। माटिक प्रकृति, बेसी बालू वाला माटि, रेत वाला माटि में जल धारण क्षमता कम होइत अछि, तैं ओहन खेत में 7-10 दिनक अंतराल में पटौनी निश्चित रूप से करबाक चाही। ओना गर्मीक मास में खेतक स्थिति देख कर निर्णय लेब उचित अछि। ओहिठाम चिकनी माटि में जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत बेसी होइए। फसिल के गाछ के स्थिति, किसान भाई लोकन अ गप के ध्यान में राखल जाए, जखन दोपहर में फसिल के गाछ सब के पात मुरझाए लगे तो अपने के ई गप बुझ लेबाक चाही जे खेत में नमीक स्तर बड़ कम भ गेल अछि, तो लगले जल्दी से जल्दी अपने पटौनी क देबाक चाही। फसिल में सिंचाई कतेक मात्रा में करी? हरेक फसिल के अपन जल के मांग निश्चित होइत अछि। ई मात्रा मिलीमीटर वा सेंटीमीटर में नापल जाइत अछि। किसान भाई लोकनि खेत में लागल फसिल में सिंचाई के मात्रा मृदा के प्रकार आ जलवायु पर निर्भर करैत अछि। गर्म आ शुष्क प्रदेश में सेहो बेसी गहीर धरि पटौनी करक चाही, जाहि सँ पानि के वाष्पीकरण कम से कम भ सके आ फसिल के गाछ के जड़ि के बेसी गहीर धरि विकसित भ सके। किसान भाई लोकनि ओना सामान्य रूप सँ एक बेर सिंचाई में 4 सेंटीमीटर सँ 5 सेंटीमीटर सिंचाई करब आवश्यक अछि। एकरा कोर गहराई सेहो कहल जाइत अछि। फसिल में सिंचाई कोना करी? खेत के ढलान, फसिल के प्रकार आ जल के उपस्थिति के आधार पर अनेक तरहक सिंचाई के विधि के व्यवहार कयल जाइए। सतही वा परंपरागत विधि में किसान भाई लोकनि सिंचाई के ई सामान्य विधि अछि। एहि विधि में नाली वा क्यारी बना कऽ पटौनी कयल जाइत अछि। ई विधि सस्त अछि, मुदा एहिमे पानिक बेसी बर्बादी होइत अछि। एकर अतिरिक्त किछु आन विधि सब सेहो अछि, जेना ड्रिप वा टपक सिंचाई विधि, फव्वारा वा स्प्रिंकल इरिगेशन। किसान भाई लोकनि सिंचाई करबा काल में किछु खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। फसिल के पाला सँ बचेबाक लेल जाड़क मास में हल्लुक पटौनी करक चाही। पानिक बचत के लेल सदिखन साँझ वा भिनसर काल में पटौनी करक चाही, जाहि से दोपहर में पानिक बर्बादी सेहो नहि होवे। किसान भाई लोकनि एहि संग आब आजुक कृषि चर्चाक समय सम्पन्न भ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ

0: में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय है नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: नेत्र रोग के क्षेत्र में ये जो चिकित्सा की जो नई नई तकनीक आ रही है वो कैसी तकनीकें हैं ये बताइए।
4: जो मॉडर्न डेवलपमेंट हम लोगों के विभाग में हो रहा है, 3 डिवीजन में उसको बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कैटरैक्ट रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा है, पहले जैसे था कि 55 साल का आदमी हो गया, रिटायर कर गया, घर बैठ गया, अब एक 60 साल का आदमी भी एक्टिव जिंदगी लीड कर रहा है, तो उसको भी एक अच्छी रोशनी की रिक्वायरमेंट है। तो कैटरैक्ट मोतियाबिंद एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा

0: आदमी को कैटरैक्ट होगा, कैटरैक्ट होगा तो पहले जब हम लोग कहते थे कि मोतियाबिंद पकने दीजिए, जब अंधे हो जाइएगा तब आइएगा, अब हम लोग ये नहीं कहते,
1: मैच्योर हो जाए तब
0: जी, अब हम कहते हैं कि आपको आपके दिनचर्या में दिक्कत हो रही है और आपकी रोशनी अगर 95% भी है तो हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। इतना अच्छा लेंसेज आ गया है और इतना अच्छा मशीन आ गया है कि बिना सुई और बिना पट्टी के ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद जो नज़दीक के लिए चश्मा लगता था पहले, अब उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
1: क्या है ये तकनीक?
0: इसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं
1: जी,
0: और ये एक बहुत सूक्ष्म छेद से ऑपरेशन होता है जिसमें हम प्राकृतिक लेंस निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस या तो मोनोफोकल या मल्टीफोकल आँख में लगा देते हैं। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो पर्दे की बीमारियों में है। पहले डायबिटीज़ अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद होती थी, मगर आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि 20 साल 25 साल के लोग बहुत तादाद में डायबिटिक हो रहे हैं, और ये जितने यंग एज में डायबिटिक होते हैं उतने जल्दी उनके नस में कमजोरियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चीनी के वजह से जो पहले पेशेंट अंधा हो जाता था वो अब हम रोक लेते हैं, या ब्लड प्रेशर के वजह से नस जो फट जाता था आंख के अंदर, खून की नली फट जाती थी, जिसका हमारे पास बहुत कारगर उपाय पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास आधुनिकतम मशीन आ गई है जिससे हम जांच लेते हैं।
1: कौन सी मशीन है?
0: इसको हम लोग OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी मशीन। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ही आंख के पर्दे का एंजियोग्राफी करते हैं। इससे हम लोग एंजियोग्राफी मशीन से हमें ये मालूम चलता है कि जो खून की नली है उसमें रिसाव हो रहा है या ब्लॉकेज है कि नहीं, और OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से हम पर्दा के डिफरेंट लेयर्स में सूजन है कि नहीं इसकी जानकारी ले लेते हैं, और डिपेंडिंग ऑन सूजन है कि रिसाव है आँख के अंदर सुई देते हैं या फिर लेजर प्रक्रिया से उस लीकेज को बंद करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम अपने पेशेंट को फिर से अच्छी रोशनी दे सकते हैं, जो साधन हमारे पास पहले नहीं था।
1: पहले जांच ही नहीं हो पाती थी,
0: हम जान ही नहीं पाते थे और हम कर ही नहीं पाते थे। जिन चीजों पर बताया जाता था जितने रोशनी कम होने के बाद इंटरवेंशन था, अब आजकल हम लोग नॉर्मल रोशनी में आंख में सुई डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजन दिख रहा है, एंड आई नो कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो 3 महीने बाद मेरे पेशेंट की रोशनी कम हो जाएगी।
1: एक भयावह स्थिति जो बन जाती है वो है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद।
0: ग्लूकोमा बिल्कुल भयावह स्थिति नहीं है।
1: अच्छा,
0: ग्लूकोमा भयावह स्थिति डॉक्टर के डायग्नोसिस मिस करने से और पेशेंट के को बीमारी की
1: जानकारी नहीं होने,
0: बीमारी के

0: नहीं था,
1: पहले जांच ही नहीं हो पाती
0: थी, जांच ही नहीं हो पाती थी, हम जान ही नहीं पाते थे और हम कर ही नहीं पाते थे। जिन चीजों पर बताया जाता था, जितने रोशनी कम होने के बाद इंटरवेंशन था, अब आजकल हम लोग नॉर्मल रोशनी में आंख में सुई डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजन दिख रहा है, एंड आई नो कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो 3 महीने बाद मेरे पेशेंट की रोशनी कम हो जाएगी।
1: एक भयावह स्थिति जो बन जाती है वो है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद।
0: ग्लूकोमा बिल्कुल भयावह स्थिति नहीं है।
1: अच्छा,
0: ग्लूकोमा भयावह स्थिति डॉक्टर के डायग्नोसिस मिस करने से और पेशेंट के को बीमारी की
1: जानकारी नहीं होने,
0: बीमारी के सिवेरिटी को और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझने के वजह से, जो तालमेल डॉक्टर और पेशेंट में नहीं होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया और आप उसका इलाज ठीक से कराते हैं, समय समय पर जाके दवाई चेकअप कराते हैं, प्रेशर चेकअप कराते हैं और अपना जांच करा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी कट जाएगी, आपको रोशनी में कमी नहीं होगी। होता क्या है, लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने दवा लिख दी, मैं दवाई डाल रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिंदगी कट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद हो, मधुमेह हो, उच्च रक्तचाप हो या ग्लूकोमा हो,
0: जी,
1: इन सारी स्थितियों में अगर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही वक्त पर इस्तेमाल करें, तो बहुत फायदा हो सकता है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। अब सुनिए भजन, स्वर है जयंती देवी और सहेलियों का।

जगजीत सिंह की स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है हरिहरन का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम उपांतना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का। मुख्य स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण की प्राप्ति भी है। वो ये है कि कलिकाल में बिना परिश्रम के ही भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है।

रामचरितमानस का। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का समय होता है 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 10 बजे। शास्त्रीय संगीत आप सुना करते हैं दिन के 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होता है 11:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन के 12 बजे।

12:30 पर आप सुनेंगे बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 1:15 पर। रोजगार सूचना आप सुना करते हैं 2:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 2:30 पर।

सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:15 पर।

0: ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होगा 6:30 पर। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुना करते हैं 7:00। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 पर। मैथिली में कार्यक्रम सिंगरहार का समय होता है 8:15 पर। शब्द शिल्प यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे मैं अपने पटना केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर हमारा फोन-इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय होगा 10:00। ये था आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत में फिर हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे 43,000,000,000,000,000 रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे

0: आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभार ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 38,100 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण

0: ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला सुनहर समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण हमरा संगे कयाम भाई नमस्कार करै छी स्वागत करै छी कयाम भाई अपने के।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपका भी और तमाम श्रोताओं का नमस्कार।
0: सब दिन कार्यक्रम के शुरुआत हम सब करै छी एकटा सुंदर विचार सँ, सुविचार सँ। तो आओ सुनै छी आजुक सुविचार। आजुक सुविचार अछि संत रहीम के, जे कहै छथि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकत करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। कहबाक तात्पर्य अछि जे नीक उत्तम प्रकृति के चरित्र व्यक्ति होइ छथि हुनका कोनो तरहक कुसंगति से हुनका डिगा नहीं सकै छनि। हुनकर अपन लक्ष्य होइ छनि, ओहि साधना में ओ दिवारात्रि जुटल रहै छथि। लेकिन यदि गुण एक दोसर के दै छथिन आ लै छथिन से नहीं भऽ सकै छै। जेना चंदन जे शीतलता के प्रतीक होइत अछि ओहि गाछ में विषधर सांप लिपटल रहैत अछि किएक तऽ ओकरा ठंडा लागै ताहि दुआरे। लेकिन एक दोसर के गुण या अवगुण नहीं दऽ पबै छै। जेना सांप अछि विष के द्योतक और चंदन अछि शीतलता के द्योतक, तहि दोनों अपन अपन संग रहितो अपन अपन गुण पर अडिग रहित अछि। ओहिना मनुष्य जे सद्गुणी छथि, गुणी छथि, ओ अपन दृढ़ लक्ष्य पर अहिना अडिग रहै छथि और ओ गुण सँ प्रेरित रहै छथि, अवगुण के अपना ऊपर हावी नहि होइ देबऽ चाहै छथिन। ई छल आजुक सुविचार। और कार्यक्रम के अहाँ लऽ चली और सुनै छी आजुक दिन के इतिहास के किछु अंश।
1: जी हाँ, बात करें आज के दिन इतिहास की, 29 मई को क्या कुछ खास है, तो आज ही के दिन माउंट एवरेस्ट

पहली बार फतह करने वाले जॉन एफ कैनेडी को के जन्म के लिए आज का दिन प्रसिद्ध है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। 1953 में इसी दिन पहली बार इंसानों ने एवरेस्ट पर कदम रखा था। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय दिवस वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करने वाले सैनिकों को समर्पित करता है। आज ही के दिन 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी

0: इतिहास के किछु अंश जकरा कयाम भाई अहाँ सबके समक्ष रखला। और इतिहास तो हर क्षण लिखाइत अछि, आओ हम एहन काज करी जे इतिहास में हमरो नाम किछु आवे लिखावे स्वर्णाक्षर में। एहि के प्रति प्रेरित भऽ कऽ कार्यक्रम के आगा बढ़बैत, अब सबसँ पहिले जे कयाम भाई किछु कहो
1: जी। बिल्कुल हाँ, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे। इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं। कार्यक्रम में हालचाल के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही साथ लोकल अपडेट्स और मैथिली सुगम संगीत और गीत संगीत होता ही रहता है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। आज के इतिहास में जैसा कि चर्चा था कि आज चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके याद में या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज है। हर साल 29 मई को ये मनाई जाती है। उनका निधन 29 मई 1987 को हुआ था। उनकी समाधि स्थल को जो नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें किसान घाट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर लखनऊ हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय खोला गया है।
0: बहुत निक कयाम जी, बहुत निक जानकारी यहाँ दिलाऊँ। आए पूर्व प्रधानमंत्री किसान के सम्मानित नेता चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न से नवाजल गेल छथि, हुनकर निधन दिवस अछि, पुण्यतिथि अछि। और ई देश चौधरी चरण सिंह के खास कऽ किसानक ई देश सत सत आजुक दिन हुनका नमन करैत अछि, हुनका आत्मा के शांति होइत प्रार्थना करै छथि। हुनका देल गेल अपन समाज के किसान के कार्य के सेहो देखैत अछि, तैं हुनकर नाम इतिहास मे स्वर्णाक्षर में चल गेल छन जे आदि आदि काल तक रहत और भारतवर्ष के आम जन ऐसा प्रसन्नता हासिल करता, खास कर किसान सब, जही लेल पूरा जीवन ओ संघर्ष केला और एक दिन सर्वोच्च सम्मान से उनका भेटल। आओ कार्यक्रम के आगू बढ़बैत, आप सुनै छी एकटा सुंदर सन मैथिली गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
1: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: रही जोरे बटोही जनक आंगन, सुदर्शन गीत सुन लो, इससे पहले भी ज्ञापन सुन लो, कार्यक्रम का आगा बढ़वे छी। गीत संगीत संगे पावन तिहार संगे हमर सबके जीवन यापन सबके चलित रहत अछि। ओहिमे सबसे पैघ महत्व रहत अछि जे हमर सबके स्वास्थ्य कोन तरह अछि, कोन तरह हम राखऽ चाहै छी, नव पीढ़ी के अपन स्वास्थ्य के बारे में की जागरूकता हमसब दऽ सकै छी आ दैत छी। ई एकटा प्रासंगिक विषय अछि, किए तऽ कहै छै स्वास्थ्य अछि तऽ सब किछु छै, यानी अहाँ स्वस्थ छी निरोग छी तऽ सब किछु अछि, आ यदि अस्वस्थ छी तऽ कोनो पाबनि तिहार व्यर्थ भऽ जाइ छै, निरर्थक लगै छै। तैं स्वस्थ आओर स्वास्थ्य एहि पर सबसँ अहम ध्यान हेबाक चाही जीवन यापन में हमरा सबके लेल। कोनो कार्य करब जीवन में, कतौ जाएब, यदि अहाँ शारीरिक मानसिक रूप से सबल छी तो अहाँ निश्चित रूप से कार्य के नीक जका करब, लेकिन अगर शारीरिक रूप से कोनो व्याधि से ग्रसित छी, अहाँ निर्बल भऽ गेल छी, कमजोर भऽ गेल छी, तो ओ कार्य बेसी देरी से होय तो अहाँ की चाहे छी, जे हम नीक जका कार्य करी या निर्बल भऽ के करी, ई अहाँके ऊपर अछि। ओहि कारण से हमर दिनचर्या की सब होइत अछि ओहि पर विचार हम सब आइ करब। हमरा सने कयाम भाई, कयाम भाई।
5: जी हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज़ के लिए स्वास्थ्य का मतलब होना, तन मन का स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी शुरुआत सुबह से ही करते हैं, और सुबह को जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। आप इसको अगर सोचें, देखें, समझें तो, और आप ऐसा करके देखें, सुबह उठना थोड़ा सा हर आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल जो चीज़ होता है जीवन में वही हमें आगे चलकर फ़ायदा देता है। कभी कभी हम सुबह उठने के लिए आलस हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप में ये फील करने लगते हैं कि अभी थोड़ा देर और सोते हैं, अभी थोड़ा देर और ये काम कर सो लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, और ये करते करते हम बहुत आगे कई महीने कई साल गुजार देते हैं और ये आदत नहीं लग पाता है। सुबह की पहली किरण जो हमारे ऊपर पड़ती है वो विटामिन डी लेकर आती है, और जो हमारे हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है, और मजबूती के साथ हम स्वस्थ रहते हैं, और जो रोग है उसे लड़ने में हमें मदद करता है। ये हम सबको पता है, छोटी छोटी चीज़ सबको पता है। सुबह जल्दी उठने से आपके शरीर की जैविक घड़ी संतुलित होती है, जिसे हम सारे दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। यह मानसिक शांति को बेहतर एकाग्रता और व्यायाम के अतिरिक्त समय प्रदान करता है, जिससे आप पूरा दिन तरोताज़ा

0: और अधिक उत्पादक महसूस करते हैं। सुबह का वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है, मानसिक तनाव दूर करता है, ध्यान लगने की क्षमता बढ़ती है। जो लोग सुबह उठते हैं उनके पास मॉर्निंग वॉक, योग या जिम जाने का पर्याप्त समय होता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और हृदय संबंधी समस्याएं दूर होती है। सुबह की धूप समय में बिताने में धूप के समय बिताने में या सुबह की धूप के में समय बिताने में शरीर में पर्याप्त प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें रात में समय से नींद आती है और गहरी नींद आती है, जिनके शरीर संतुलित घड़ी सही बनाई रहती है। और घड़ी की सुई भी ये इशारा कर रही है कि हम बहुत सारी चीज़ों को चर्चा के साथ साथ इस बार और भी बातें हम करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं और समय के साथ यूं ही चलते रहना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। और हम भी कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा से हम सारी चीज़ों को समय पर समेट कर लेकर आएँ। और अब वक्त हो चुका है हालचाल का, हालचाल प्रस्तुत करेंगे प्रवीण कुमार झा।
1: नमस्कार, हालचाल संघ, हम प्रवीण कुमार। बिहार के विश्वविद्यालय सब में कुलपति नियुक्त हित पैघ प्रशासनिक और शैक्षणिक बदलाव भ सकैत अछि। लोक भवन राज्य के तीनटा प्रमुख विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हित पहले से देल गेल विज्ञापन के रद्द कऽ देलक अछि। वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय आरा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और मौलाना मजहूर हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना अछि। आब बिहार में विश्वविद्यालय सब में विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर बिहार के शिक्षाविद आ स्थानीय प्रोफेसर के प्राथमिकता देल जायत। आब नव मापदंड सँ होयत कुलपति सब के नियुक्ति, स्थानीय प्रोफेसर और विद्वज्जन सब के प्राथमिकता देल जायत। गांव से लकर शहर तक ईदगाह सब में फरजना नदा तौधिक अदा ईद उल अजहा के नवाज बकरीद पर्व एक दोसर सँ गला मिलकर मुबारकबाद दऽ कऽ मनेलनि और शांतिपूर्वक नवाज अदा कयलनि। नैना भुटका के उत्साह देखैत चरम पर छल, शांतिपूर्वक पर्व सम्पन्न भेल और एक दोसर के बधाई देलनि और नीक पावनि पर नीक पकवान सबके ग्रहण सेहो कयलनि। दरभंगा एलिवेट रूट बाट और आरओबी निर्माण काज में तेजी लेवाक लेल जिला पदाधिकारी काली निरीक्षण कयलनि, समय पर काज हेबाक लेल सख्त निर्देश सेहो देलनि। कहला जे आम जनता के एहि सँ परेशानी नहि हेबाक चाही। करपोड़ी चौक सँ लऽ कऽ अललपट्टी तक कार्यस्थल के निरीक्षण केलाक उपरांत कहलनि जे आम जनता के यातायात सुचारू ढंग से होए, एकर संचालन सुचारू ढंग से हेबाक चाही, तकर निर्देश सेहो देलनि। कहलनि जे निर्माण कार्य सेहो हेबाक चाही, लेकिन निर्माण कार्य के आर में यातायात व्यवस्था के अवरुद्ध केनाय ई दंडनीय अपराध है, तें यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चलवाक चाही, एकर सख्त दिशा निर्देश देलनि। राजभवन सब विश्वविद्यालय में USIS यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम या अन्य कोनो समांतर डिजिटल सिस्टम के नव टेंडर देवाक आ पुरान टेंडर के नव करवाक पर रोक लगा देलनि अछि। एहि बात के लेल राज्यपाल के सचिवालय के द्वारा सब कुलपति सब के एकटा पत्र देल गेल अछि। विश्वविद्यालय सब में छात्र छात्रा के प्रवेश संग लऽ कऽ अंक पत्र निर्माण पूरा प्रक्रिया संग संग वेतन पेंशन भुगतान अवकाश प्रबंधन लेखा संबंधी काज के केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम सँ संचालित हो के राज्य भवन विश्वविद्यालय सबके निर्देश देलनि अछि, जै कारण से ई पूरा डिजिटीकरण के दिशा में महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम होयत, एकर पालन अक्षरशः हेबाक चाही।

0: राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात यानी ट्रैफिक चलान पर जे जुर्माना भेल अछि ओहि में आप 50% तक छूट भेट सकैत अछि। आम जनता जे किछु यातायात व्यवस्था के केस चल रहल छैन ओ आगामी राष्ट्रीय अदालत जे दरभंगा में 12 सितंबर 2026 का लागत ओहि में आबि कऽ ओहि जुर्माना में अहाँ 50% छूट लऽ सकै छी। अन्य कोनो तरहक समस्या है राष्ट्रीय लोक अदालत जे लागि रहल अछि ओहि में अहाँ आवेदन दऽ सकै छी। एहिसँ आम जनता के सहूलियत होइ छै, आफियत सेहो भेटै छै और समय और धन के सेहो बचत होइ छै। तहि राष्ट्रीय लोक अदालत आइ बहुत चर्चित भऽ चुकल अछि। अहाँ के कोनो तरहक समस्या होय तो राष्ट्रीय लोक अदालत में लऽ कऽ अवश्य आबी, समाधान तत्काल होयत। बकरीद के शांतिपूर्वक संपन्न भेला के बाद मुस्लिम भाई बहन सब हाथ में कागज के पट्टा लऽ कऽ ओहि पर लिखल पोस्टल लऽ कऽ ठाड़ भेलनि और गाय के राष्ट्रीय पशु घोषित करबाक लेल अपन मान कयलनि। ओहि पोस्टर पर नारा लिखल छल, दरभंगा सदर शिशु पश्चिम के ऐतिहासिक ईदगाह में सामाजिक सौहार्द और शांतपूर्वक वातावरण में नमाज के उपरांत एक दूसर के बधाई देला के उपरांत ई पोस्टर जारी कयल गेल और कहल गेल जे राष्ट्रीय पशु के रूप में गाय के घोषणा हेबाक चाही। एहि पहल पर आमजन के मन आनंदित भऽ आनंदित भेलनि, खास कऽ हिंदू समाज के मन गदगद भेल। ओ एहि महत्वपूर्ण मांग के समर्थन कयलनि और मुस्लिम भाई सब के एहि के लेल बधाई देलखिन। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: एक बार हाल चाल में पुनः स्वागत। बिहार में विश्वविद्यालय सब में आरंभ होयत 7 नव रोजगारमुखी कोर्स, UGC गाइडलाइन के अनुसार लागू होयत ई व्यवस्था। रेलवे लहरिया सराय चट्टी और दिल्ली मोड़ गुमती पर पुल के देलक स्वीकृति, संग संग वन विभाग सँ नहीं भेटल NOC जै कारण कगवा गुमती पर बिना गाछ के हटौने निर्माण कार्य संभव नहीं भ सकत। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं नमस्कार मिथिला में। नमस्कार मिथिला को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो दरभंगा से सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 बजे दरभंगा से हैदराबाद के लिए, शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: और चलित चलित एकटा मौसम के जानकारी सेहो दऽ दी। आजुक उच्चतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकैत अछि और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकैत अछि। संगे संगे तेज बसात चलबाक संभावना अछि। कार्यक्रम में

हमसब शुक्र दिन सब दिन सुनै छी गांधी कथा। तो गांधी कथा के गांधी के जीवन पर आधारित ई कथा होइत अछि। सब शुक्र दिन के हमसब ई कथा के सुनै छी। त आइ बंधुगण शुक्र दिन अछि आ आइ हमसब गांधी कथा सुनब। तो आओ सुनै छी ई गांधी कथा।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। सन 1929 का वर्ष समाप्त होने और 1930 का वर्ष प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने भारतवर्ष की आजादी का झंडा फहरा दिया और गांधी जी को अपना अगुआ बनाकर पूर्ण स्वाधीनता तथा अंग्रेजी हुकूमत से संबंध विच्छेद की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और नमक कानून उल्लंघन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। लंदन में 12 नवंबर 1930 को पहली गोल मेज परिषद की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू सहित 20 से अधिक अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट करने के लिए पत्र लिखा। इरविन और गांधी जी की पहली मुलाकात 17 फरवरी, दूसरी मुलाकात 18 फरवरी और तीसरी मुलाकात 19 फरवरी को ही। 1 मार्च को इरविन और गांधी जी की फिर मुलाकात हुई जो काफी देर तक चली और आपसी वाद विवाद के बाद 5 मार्च की सुबह गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद सरकार ने उसे भंग कर दिया। इस बार गांधी जी को नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से फिर चर्चाएं करनी पड़ी। मामला तय होने के बाद दूसरी गोलमेज परिषद हुई जिसमें कराची के कांग्रेस अधिवेशन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी का चयन किया। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे और 5 दिसंबर तक वहीं रहे। वे दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे सरकारी तथा गैर सरकारी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे लेकिन गोलमेज परिषद असफल रही। परिषद ने एक अल्पसंख्यक समिति नियुक्त की जिसमें 6 अंग्रेज, 13 मुसलमान, 10 हिंदू, 2 मजदूर प्रतिनिधि, 2 सिख, 2 अछूत, 2 भारतीय ईसाई, 2 भारत प्रवासी अंग्रेज, 1 पारसी, 1 एंग्लो इंडियन और 4 महिलाएं रखी गई। महिलाओं को छोड़कर सभी ने पृथक निर्वाचन की मांग की लेकिन गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत में सभी भारतीय भारतीयों को भारतीय की तरह मत देंगे। भारत को 1930-31 में जो आंशिक स्वाधीनता प्राप्त हुई वह गांधी जी, इरविन और ब्रिटिश मजदूर सरकार के प्रयत्न का ही परिणाम थी। लेकिन इरविन जा चुके थे और अक्टूबर 1931 में रैमजे मैकडोनाल्ड की मजदूर सरकार के स्थान पर मैकडोनाल्ड के ही नेतृत्व में अनुदार दल की प्रधानता वाला दूसरा मंत्रिमंडल बन गया था। सर सैमुअल होर को भारत का राज्य सचिव घोषित किया गया। यह नई ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी की भावना पर आघात करने लगी। फलस्वरूप 28 दिसंबर को गांधी जी बंबई पहुंचे और दूसरे ही दिन भेंट करने की इच्छा से वायसराय को टेलीग्राम भेजा। जब वायसराय मिलने को तैयार नहीं हुए तो गांधी जी ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के विषय में

सूचित किया। तत्पश्चात 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और सरकार ने सारी कांग्रेसी संस्थाएं बंद करके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में गांधी जी अपने कपड़े स्वयं धोते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे और खूब किताबें पढ़ते थे। जेल में ही गांधी जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के लिए प्रस्तावित नए ब्रिटिश संविधान में न केवल पहले की भांति हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, बल्कि नीची जाति के हिंदुओं के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा। गांधी जी उन लोगों के लिए अलग से मतदाता सूची के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने 11 मार्च 1932 को भारत सचिव सैमुअल होर को एक पत्र में लिखा कि हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। दूसरे ही दिन गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड को लिखा, मैं आपके इस निर्णय का विरोध करता हूं। इसके लिए मैं सोडा और नमक के साथ या खाली पानी के सिवा किसी भी प्रकार का भोजन न लेकर आमरण उपवास की घोषणा करता हूं। 20 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अंतिम बार भोजन किया, जिसमें उन्होंने नींबू का रस, शहद और गर्म पानी लिया। करोड़ों भारतवासियों ने प्रार्थनाएं की और 24 घंटे का उपवास रखा। 20 सितंबर को हिंदू नेतागण राजगोपालाचारी, सप्रू, घनश्याम दास बिरला, राजेंद्र प्रसाद आदि बंबई के बिरला भवन में एकत्र हुए। उस समय हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर सोलंकी तथा डॉक्टर अंबेडकर थे। पहले तो गांधी जी हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों के भी विरोधी थे, परंतु बाद में वे सहमत हो गए थे। अंबेडकर ने इसका विरोध किया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने 20 सितंबर के सम्मेलन में एक योजना पेश की, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया।

0: मस्त मस्त गीत एखन सुनलहुँ, नीक लागल। और कार्यक्रम के आगाँ बढ़बैत आप समसामयिक पर किस एक नजर।
1: गृहमंत्री ने प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने नीपम ने कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री ने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों की शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर है, जिसमें उन्हें 3 T20 श्रृंखला और एकमात्र टेस्ट खेलना है। T20 का पहला मुकाबला भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 38 रनों से हरा दिया। इसका दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज क्वालिफाई 2 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में 7:30 बजे खेला जाएगा। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ फाइनल मुकाबला में भिड़ेंगी।
0: समय के बाद आप चलत हम सब सुनै फिर एक सुंदर सा फिल्म संगीत।

0: कर लूं कहीं झलक ही,
1: पलक बंद कर लूं कहीं झलक ना जाए, सुंदर सन फिल्म संगीत सुन लूं। कार्यक्रम सब दिन हम सब लोग अबै छी अहाँ सबके लेल, अहाँ सबके सलाह मशविरा सेहो हम सब लै छी, हमर सबके ऑनलाइन सेहो कार्यक्रम सुनल जाइत अछि।
2: जी बिल्कुल, रेडियो को आप बिल्कुल अपने पास तो रख ही सकते हैं, साथ ही साथ रेडियो अलग अलग तरीके से है, छोटा बड़ा सब रेडियो चलता है, लेकिन अब

0: से भी कहीं ज़्यादा छोटा रेडियो जो आपके पॉकेट में है वो रेडियो है। उसका आसान तरीका है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, जहां न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम को फेवरेट बना सकते हैं और रेडियो बिल्कुल आपके पास, आपकी दिल अपने आपके मन के पास।
1: और आज जो विषय छल जे स्वास्थ्य जिंदगी में सबसे पैघ चीज छे, तें अपना स्वास्थ्य पर सब केओ ध्यान राखब और खास कर ऐ समय में जे उतार चढ़ाव भ रहल अछि, गर्मी में लगले वर्षा भ जाइए, ऐ में बच्चा के वृद्धि के विशेष ध्यान राखब और भोरे भोर ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर अपन स्वास्थ्य के नीक करब, जैसे अहाँ के जीवन में सब काज सफल होयत। संग आजुक कार्यक्रम से हमरा प्रवीण के
0: और कयाम नेर को दीजिए आज्ञा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।

0: ovi.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा

0: को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने

0: तीन करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय

0: यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इस कारण यात्रा खर्च भी स्टेशनरी गार्ड कॉर्प्स दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी।

0: floor to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
2: उस बेटे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवम्बर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे

0: रखने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादलाए ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबरा और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे, जहाँ उससे विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्विशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्विशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु

0: तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड्स जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। NTA ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह पैनुलक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुलक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुलक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नज़र राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजर आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने DK शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: rating.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर 1 जून से काम पर लौटने का किया फैसला। और पटना, गया, नालंदा, वैशाली और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में हो रही है तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या की बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से

0: निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का भी आकलन करेगी।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता दोहराई है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
2: एक ही रास्ता है जिससे आप समृद्ध हो सकते हैं और वो है ज्ञान अर्जन करना। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेउर जेल ही जाना होगा। जो अचानक अमीर बनना चाहता है वो इंटरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा उसके घर पर छापा पड़ा। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
3: हाँ महिम, राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और प्रथम पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: इससे पहले कल श्री चौधरी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों से विकसित बिहार बनाने के संकल्प में सहयोग की अपील की। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई भेंट में विकसित बिहार और कृषि क्षेत्र के उन्नयन में युवाओं और महिला उद्यमियों की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर दी है। 1 जून से सभी पंचायत सचिव अपनी पंचायत और प्रखंड में योगदान देंगे। हालांकि पंचायत सचिवों ने स्पष्ट किया है कि वे अभिकर्ता नहीं बनेंगे। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह के साथ अलग अलग वार्ताओं के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संघ की सभी 5 मांगों को मानने का भरोसा दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए प्रत्येक बालू घाट पर इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बंदोबस्तधारी को धर्म कांटा और विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये दोनों उपकरण केंद्रीय सर्वर से जुड़े होंगे जिससे विभाग केंद्रीयकृत स्तर पर ओवरलोडिंग की निगरानी कर सकेगा। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विशेष निगरानी इकाई ने सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार मामले के आरोपी ठेकेदार ऋषो श्री को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार ठेकेदार पर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। लोक भवन ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय की ओर से अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण का विज्ञापन

0: निकालने की मांग को लेकर छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कल अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। यह संगोष्ठी मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण विषय पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। पटना और आसपास के इलाकों में दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग कल एक दिवसीय दौरे पर बोधगया आ रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा तथा उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पटना में सीएनजी की कीमत अब 2 रुपये प्रति किलो बढ़कर 92.90 रुपये प्रति किलो हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में हुई अचानक वृद्धि से खगड़िया जिले के कोगड़ी प्रखंड के कपसिया पिरबास पीपा पुल के दक्षिणी छोर का एक हिस्सा पानी में धंस गया। इससे खगड़िया सहित मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर जिले से इस इलाके का संपर्क भंग हो गया है। पीपा पुल का इसी साल 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। पटना के राजेंद्रनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन परिसर से TRI की टीम ने एक पिकअप वैन से 7,500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की है। मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इधर पटना के ही रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कंटेनर से 50 लाख रुपए मूल्य की 30,000 बोतल कफ सिरप जब्त की है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय में शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने कई उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले में कई कर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रोहतास जिले के डेहरी

0: थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के 5 क्विंटल गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। सिवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र के कुशवाहा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत चकलाल शाही चौक पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दंपति और उनकी पोती की मौत हो गई। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के तरबना पोखर के पास ई रिक्शा और कार के बीच हुई टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने जहानाबाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार को अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। शिवहर जिले के श्यामपुर भटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव में आपसी विवाद में हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। कटिहार में 4 दिवसीय बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 19 जिलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, विकसित बिहार के संकल्प में सहयोग करें अफसर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कर्नाटक में सिद्धरमैया का इस्तीफा, डीके का रास्ता साफ। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में अब लू नहीं, मॉनसून तक ठनके के आसार। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट रीटेस्ट पेपर को ले जाने में वायुसेना की मदद लेने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय ने दी हरी झंडी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सूबे के सभी प्रखंडों में बतौर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन खुलेंगे मुख्यमंत्री। आज अखबार ने लिखा है, संविदा महिला कर्मियों को स्पेशल छुट्टी, बिहार बना देश का पहला राज्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर 1 जून से काम पर लौटने का किया फैसला। और पटना, गया, नालंदा, वैशाली और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में हो रही है तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया की

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

وہاں فرشتوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، جو نقش پائے حبیب خدا پہ چل

0: मुझे हैं मोहम्मद मुस्तफा।
1: इसके साथ आज का उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दामिनी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साधना सरगम। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत है अनु मल्लिक का।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत है जतिन ललित का।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वरों में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। गीतकार समीर और संगीत है जतिन ललित का।

बागवान फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म शुक्रिया से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत समीर का है और इस गीत को संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

गायक कलाकार अभिजीत की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म यस बॉस से। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत है जतिन ललित का।

भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में। संगीत जतिन ललित का है।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाजों में, जिसे लिया हमने फिल्म बाजीगर से। गीत गौहर कानपुरी की है और संगीत है अनु मल्लिक का।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था जतिन ललित का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जीना मरना तेरे संग से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत समीर का है और संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारी इस रोड़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं अलाउद्दीन खान। आइए इनसे सुनते हैं सरोद वादन, राग अलहिया बिलावल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अलाउद्दीन खान से सरोद वादन राग अलैया बिलावल में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। ये सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी

0: audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था

0: डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके? पीछे,
3: इधर, इधर, इधर,
2: शॉट ले, शॉट ले, वेरी गुड।

0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
1: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
2: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
3: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
4: धन्यवाद श्रीमान।
3: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
4: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
3: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
4: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
3: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालुबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालुबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालुबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर

0: पहुंचेगी और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
3: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
2: आक्रमण हुआ
3: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी।

0: गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोता भी अब सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। अब आप आन लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मां से। गायक कलाकार हैं उषा उतुफ। गीतकार प्रणव वत्स और संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने।

राघव सचर के संगीत निर्देशन में गए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म मिशन मंजू से। गीत के बोल लिखे थे रोहित शर्मा ने। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसी फिल्म से, जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीत रचना सबीर अहमद की है और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: राम संपत के संगीत निर्देशन में गए इस गीत को भी आप सुन रहे थे। फिल्म लापता लेडी से श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत लिखा था स्वानंद किरकिरे ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरजोत कौर और गोपी सुंदर की आवाज़ में फिल्म द फैमिली स्टार से। गीतकार हैं रश्मि विराग और संगीत दिया है गोपी सुंदर ने।
1: बरखा जब

वेदा फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी गीत के साथ फिल्म नए फिल्मी गीतों का सफर यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सखी श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। मैनो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर परिवार से जुड़ा है, बढ़ती उम्र के साथ सेहत की चुनौतियां। उम्र का बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। यदि समय रहते सही देखभाल की जाए तो बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बहनों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, नतीजा

घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नज़र का कमजोर होना और कमजोरी, उसके साथ जल्दी बातों को भूल जाने की बीमारी। इसके अलावा कई बुजुर्ग अकेलापन और तनाव भी महसूस करने लगते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। मैंने कुछ रोज की आदतों में बदलाव लाकर इन सभी समस्याओं को एक हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले भोजन में बदलाव करना जरूरी है। भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए। बुजुर्गों के भोजन में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और पर्याप्त पानी जरूर होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले गरिष्ठ भोजन और मीठी चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नियमित व्यायाम या फिर योग। हल्की सी सैर, योग, प्राणायाम शरीर को सक्रिय रखते हैं और मन को भी शांत बनाते हैं। इसलिए इन्हें जीवन में जरूर शामिल करें। इन सबके साथ साथ आप समय समय पर स्वास्थ्य की जांच भी जरूर कराएं, क्योंकि समय पर स्वास्थ्य की जांच बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर और आंखों की जांच डॉक्टरी सलाह के अनुसार कराना चाहिए। मैंने इन बातों के अलावा अकेलापन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। घर के बुजुर्गों को अकेलापन ना महसूस होने दें। उनसे बातचीत करें, उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे शरीर के लिए जरूरी है। तो चलिए बहनों, हर कोई, हर बहनें, स्त्रियां और बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों पर अमल करके स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो चलिए इसी चर्चा के साथ सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। वार्ताकार हैं श्वेता और विषय है मानसून में जल संरक्षण कैसे करें। जल संरक्षण आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दैनिक जीवन में जल बचाने का सबसे अच्छा तरीका जल की खपत को कम करना और पानी के रिसाव को रोकना है। इसमें नल को बंद रखना, शावर के समय कम पानी का इस्तेमाल करना, रिसाव वाले उपकरण को ठीक करना और आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आने वाले मानसून में हम जल का संरक्षण कैसे करें। आने वाले मानसून में जल संचयन के लिए आप वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। नल को बंद करके और कम समय तक नहाकर पानी की बचत कर सकते हैं। पौधों को सींचने के लिए डीप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल का संचयन, आप अपनी छत से बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पौधों को पानी देना या घर की सफाई करना। आप जब भी ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, शेविंग करते हैं या हाथ ही क्यों ना धोते हों, तो आप कोशिश करें कि नल को बंद

करके रखें, इससे भी जल का संरक्षण होता है। पौधों को सींचने के लिए डीप सिंचाई का उपयोग करें, क्योंकि ये पानी का सबसे कुशल उपयोग करता है। अपने बगीचे में पानी के लिए टर्फ के बजाय झाड़ियां और भूमि आवरण वाले पौधे लगाएं। पुल और स्पा पर कवर लगाएं और पंपों को आसपास लीक होने की जांच करते रहें। पानी बचाने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करें और उन्हें समय समय पर ठीक करवाएं। जल संरक्षण के बारे में दूसरों को शिक्षित करें और पानी के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों से भी संपर्क बनाए रखें। बारिश के पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन तरीका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को घर की सफाई, बर्तन साफ करने और अन्य घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के बारे में बात करें तो टांका, जिसे कि राजस्थान में थार रेगिस्तान में प्रचलित एक पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण तकनीक कहा जाता है, इसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत गड्ढों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह घरों की छत पर एकत्रित होने वाले वर्षा जल को इकट्ठा करके उपयोग में लाने की तकनीक, जिसे कि छत जल संग्रहण कहा जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बावड़ी यानी कि सीढ़ियों वाली संरचनाएं जो भूजल स्तर को बनाए रखने और पानी को स्टोर करने में मदद करती हैं, इसका प्रचलन भी पारंपरिक तौर पे पहले किया जाता था। अब बात करते हैं भूमिगत जल उपयोग के बारे में, तो इसमें भी नाड़ी, जोहड़ और झाला ये तीन प्रमुख तरीका है। भूमिगत जल को एकत्रित करने और उपयोग करने के लिए खोदे गए गड्ढे को नाड़ी कहा जाता है। तालाब या जलाशय जो वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और फिर धीरे धीरे भूमिगत जल को रिचार्ज करते हैं, उसे जोहड़ कहा जाता है, और जल को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए भूमिगत जलाशय को झाला कहा जाता है। इसके अन्य पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे कि चेक डैम, नदी या नाले में बनाए गए बांध जो कि पानी के प्रवाह को धीमा करते हैं और भूजल को फिर से रिचार्ज करते हैं। खादिन, जो कि एक प्रकार का भूमि सुधार तकनीक है, इसमें मिट्टी के कटाव को रोकने और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बांध बनाया जाता है। और बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो कि जल के नुकसान को कम करने के लिए पौधे तक पानी पहुँचाने के लिए बांस के उपयोग के द्वारा किया जाता है। इन सभी से बहुत फायदा होता है। आप पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक लाभ भी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, कृषि और अन्य गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी जल प्रबंधन के लिए उपयोगी है। इन तरीकों को अपनाने से हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

बनो चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। विषय है महिलाएं और गर्भावस्था। गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक बहुत खास समय होता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रख सकती है। बहनों, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सबसे पहले अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल, चना, अंडा और पर्याप्त मात्रा में पानी को जरूर शामिल करना चाहिए। समय पर भोजन करें और ज्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। समय पर डॉक्टरी जांच करवाती रहें। इस अवस्था में डॉक्टर की जांच निरंतर करवाते रहने से मां और बच्चे दोनों की स्थिति का पता चलता रहता है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीका जरूर लगवाना चाहिए। इससे कई बीमारियों से बचाव होता है और जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। गर्भावस्था के दौरान भारी सामान उठाने, ज्यादा तनाव लेने और बिना डॉक्टर की सलाह दवा खाने से बचना चाहिए और इसके साथ ही पर्याप्त आराम और अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। बहनों, हल्की सैर और सकारात्मक माहौल में माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ये लाभदायक होता है और हमेशा कोशिश करें कि घर में माहौल अच्छा बनाकर रखें। अगर गर्भावस्था के दौरान महिला की तेज सिरदर्द, सूजन पैरों में और चक्कर, बुखार या ज़्यादा कमजोरी का अनुभव हो तो तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह की परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। बहनों, स्वस्थ माँ से ही स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं की देखभाल पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो चलिए

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। इसमें आज हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे सुझाव जो कि गर्मी से बचाव के लिए लाभदायक होंगे। गर्म हवाएं, लू और अत्यधिक पसीना आना। आजकल जिस प्रकार गर्मी रोजाना बढ़ रही है, उसे देखते हुए जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलने की कोशिश करें। दोपहर को धूप में न घर से बाहर जाना पड़े, वही अच्छा है, क्योंकि बार बार घर से बाहर निकलने से धूप और लू लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब भी कहीं काम से बाहर जाएं तो पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें। कच्चा प्याज जरूर भोजन में सलाद के रूप में खाएं। भोजन हमेशा ताज़ा खाएं। दही, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी पीते रहें। मौसमी फल का सेवन करें, जिसमें कि आजकल तो बाज़ार में बहुत आसानी से तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर ये सब उपलब्ध है, जो कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, तो इन सब का सेवन भी ज़रूर से करें। चेहरे को हमेशा ढक करके रखें और कोशिश करें कि आप स्ट्रीट फूड ना खाएं। बहनों, ये सभी बातों का ध्यान रखकर आप भीषण गर्मी से खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसी तरीके के अपने सुझाव, अपनी व्यंजन विधियां हमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, दरभंगा। आप चाहें तो अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, चलते चलते एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

रिमझिम गिरे सावन। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मंजिल से। श्रोता बहनों, बाहर मौसम भी बड़ा सुहावना सा है, बारिश हो रही है, बादलों की झड़ी लगी हुई है और लगता है कि चलो झूम के सावन बरसे। और सावन के मौसम में ऐसा प्यारा सा गीत वाकई मौसम को बदल दिया। तो चलिए, अब धीरे धीरे स्टूडियो में लगी घड़ी इशारा कर रही है कि चलो श्वेता, वक्त हो चला है अपनी प्यारी श्रोता बहनों से विदा लेने का। तो दीजिए इसी सुनहरे गीत के साथ विदा। श्वेता को नमस्कार।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे

0: भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं, 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत, साथ ही सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइशी 1:15 पर, दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनवाएंगे रोजगार सूचना।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे शाम 5:40 पर। हफ्तावार जायजा आप सुनेंगे शाम 6:10 पर।

विद्यापति की दुकान लेंगे शाम 6:15 पर। गांव घर कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:30 पर। गांव घर में आज श्रोता सुनेंगे नन्हा मुन्ना राड़ी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:00। साथ ही संध्या काल में आप फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 7:52।

मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगर हर आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से शब्द शिल्प आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति। साथ ही रात्रि 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। ये सुनते हैं देशभक्ति गीत। विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। अब समय हो चला है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, जो आप अपने पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम का, यानी आपकी फरमाइश का। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र और आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हुई हूं। पहला जो पत्र आया है वो है बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोरदर सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहात्र वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। इन लोग की फरमाइश है फिल्म भाभी का यह गीत सुनना चाह रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है चित्रगुप्त ने। एक और फरमाइश आई है जो है पटेल नगर मटोल पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी अनुराग जाजोरिया। एक और पत्र आया है, इन्होंने लिखा है नमस्कार, आप अपने मन का कोई भी गीत सुना दें। ये हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। तो हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें, क्यों ना हम आपको इसी प्यारे से गीत में शरीक करते हैं। तो आइए सुनते हैं यह फरमाइशी गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आला हम सफर हम राज हो ता कयामत

गुलशन बावड़ा के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जंजीर से। गायक कलाकार थे मन्ना डे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया था। इस पत्र की फरमाइश आई थी इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से, नूतन सहनी, रासो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल सहनी, निशु कुमारी, नव्या सहनी, एस के सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इन लोगों की फरमाइश यह थी या सुनना चाह रहे थे मन्ना डे के गाए इस गीत को फिल्म जंजीर से। श्रोताओं, एक और पत्र आया है, ये है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, ग्राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।

इन लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म हमराज का यह गीत। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल लिखे हैं शाहिर लुधियानवी ने और इस गीत को संगीत दिया है रवि ने। एक और पत्र है जो है नाहर मंटोला से, कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली और मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, इन लोगों को भी हम इसी प्यारे से गीत में शरीक करते हैं। और आप हैं जादू का किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदी नाज, लाली साफी। इन्होंने लिखा है भैया एवं दीदी जी, आपको मेरा नमस्ते। आपके अनुरोध में आप श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत और आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। इनको भी शरीक करते हैं इसी गीत में। और आप हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। गाना कोई भी आपकी पसंद का सुना दें तो गाना, चलिए हम भी अपने इस पसंद का ये भी हमराज फिल्म्स में आपको शामिल करते हैं और सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। पत्रों की इतनी सारी संख्या बता रही है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कितना प्यार देते हैं और यूं ही देते रहें और हम भी आपको इसी तरह सुंदर सुंदर गीत सुनाते रहें। तो आप हैं राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, MK गुप्ता एवं मित्रगण। छपरा ददली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत गुप्ता एवं सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटो कुमार गुप्ता एवं निक्की कुमार गुप्ता। आप हैं फुलवासरी पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जानवी और पीहू। इन लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म सौतन की बेटी का यह गीत किशोर कुमार का गाया, संगीत दिया है विकी प्रसाद ने। एक और पत्र आया है, इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत में हमें शामिल करें। आप है गांव फ्रांसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। आइए सुनते हैं आप लोग की फरमाइश का यह प्यारा सा गीत। एक और श्रोता है, इन्होंने लिखा है किशोर कुमार, हमें किशोर कुमार के सुर में किसी भी फिल्मी गीत में शामिल कीजिएगा, सौ धन्यवाद। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। आइए सुनते हैं आपका यह फरमाइशी पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और यूं ही आप आनंद लेते रहें और हम तक अपने प्यारे प्यारे पत्र के माध्यम से यह प्यार और गीत भरा पत्र हमें भेजते रहें। एक और पत्र आया है, यह सुनना चाह रहे हैं अमर प्रेम का यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन दिया है आरडी वर्मा ने। तो आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और शाहिल। एरोड्रम थाने के पास वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा बिक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परिखर से।

और ललिता नारायण खड़चे। एक और पत्र आया है, ये है लुधियाना पंजाब से। इन्होंने लिखा है, प्रिय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। हमें अपने पसंद के किसी भी फिल्मी गीत में शामिल करें, तो क्यों ना हम आपको इसी प्यारे से गीत में शामिल करते हैं। आप हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप हैं वली अल्लाह फकीर, डब्लू अल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू अली अंसारी और फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फर्ज से। गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है। गीत रचना है आनंद बख्शी की। श्रोताओं अभी जो आप गीत सुन रहे थे इसकी फरमाइश आई थी एकता रेडियो श्रोता संघ बरी खंजरपुर भागलपुर बिहार से भाई गुलफराज आलम बेगम समारा दोस्त जलाम उल दीन नेपाली फर्जा फातिमा और यूसुफ हमजा। एक और पत्र आया था जो है यह है आपको तहसील मालकापुर महाराष्ट्र से ग्राम महेशवाड़ी शत्रुघ्न थाने वाल्मीकि थाने नीनाजी थाने स्वप्निल थाने अजय खिरोड़कर। एक और पत्र आया है जो है इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म फर्ज का यह गीत। आप हैं गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी बेगम रेहाना परवेज अशरफ हसन इमाम। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी विष्णु साहू अंकिता अमृता जोशी लोकेश जोशी। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। आप हैं अमरपुर पेंड्रा से छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लबी श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का यह गीत।

श्रोताओं, एक और पत्र है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से। इनकी फरमाइश है आप किसी भी गीत में मैं शामिल करें। आप है राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार यानी कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली नया नगर सुपौल से, श्वेता रंजन, पप्पू जी, राजेश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला।

श्रोता, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आपकी फरमाइश कार्यक्रम पसंद आता होगा और आया ही होगा। यूं ही आप इसी तरह अपने पत्रों को शामिल करें अपने फरमाइशी गीतों के साथ। तो बहुत सारे पत्र ऐसे भी हैं जो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं और आपको नहीं सुनवा पाते आपकी फरमाइश आप तक, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन हम लोग का कोशिश रहता है कि आप लोग को आपके पत्रों को आपके गीतों को शामिल करें हम अपने इस कार्यक्रम में प्रत्येक शुक्रवार को आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। तो इसके लिए आप पत्र भेज सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार 8460004। इसी के साथ अब दीजिए इस प्यारे से कार्यक्रम से हमें विदा। यूं ही आप अपने प्यारे पत्रों को हम तक भेजते रहे और हमारा आपका साथ गीत के माध्यम से यूं ही बना रहे। नमस्कार। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। पटना और आसपास के इलाकों में आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। खेतों में लगी फसलों के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में 2, औरंगाबाद और गया जी में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले श्री चौधरी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग हलाइंग कल एक दिवसीय दौरे पर बोधगया आ रहे हैं। वे विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरोर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उनका म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों के दौरे का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बेली ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि तकनीकी ऑडिट के रिपोर्ट पर एक और बेली ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सीमा सड़क संगठन और पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में शेखपुरा जिले की 3 पंचायतों केवटी, महसार और डीहकू सुंभा के मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 3 जून को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित मुखिया में दीपक कुमार, साधु चौधरी और मथुरा यादव को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा तथा उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जापान में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी शैलेश कुमार और हिमांशु यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे का मूल्य 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

भारतीय नौसेना भर्ती 2026 कुल पद 60 रिक्त हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 29 मई 2026 है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। इच्छुक विद्यार्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता के जन्म की तिथि 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 तक होनी चाहिए।

एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 के लिए कुल 12,256 पद का आवेदन जारी किया गया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 21 मई 2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होना चाहिए। आवेदक का जन्म 1 अगस्त 2026 मान है। साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा कुल पद 11,127 है। आवेदन शुरू करने की तिथि 15 मई 2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 रखी गई है। इस पद के आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। 1 जुलाई 2026 इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

है। इस पद के आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। 1 जुलाई 2026 इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के कुल पद 1189 दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी कारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस

0: मामलों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का

0: एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में

0: 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः आप आने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म कभी धूप कभी छांव। इस गीत को गाया है प्रदीप ने, गीत लिखा है प्रदीप ने और इस गीत को धुन दिया है चित्रगुप्त ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म काला बाजार से। गीत रचना शैलेंद्र ने की है और इस गीत को धुन दिया है SD बर्मन ने।

सावन कुमार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सबक से, आवाज मुकेश की थी, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जसपाल सिंह और कल्याणी की आवाज में, फिल्म का नाम सावन को आने दो। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राज कमल के हैं।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्दिश से। आवाज थी आशा भोसले की और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। श्रोताओं, फिल्मी गीतों के सफर का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में गीत और संगीत मिथुन के हैं। फिल्म का नाम सनम रे।

अरिजीत सिंह और मिथुन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
2: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल

युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

0: मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सब इसकर, पीछे जा, हाँ, और सब इस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: संगठन का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
4: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी

0: भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
1: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
2: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
2: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नू।
2: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
2: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
2: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई

0: दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

आमीन। अभी आप पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था पयाम सईदी का। सामीन, हमारी सोच व फिक्र हमारी ज़ाहरी और बातनी शख्सियत पर गहरा असर डालती है। मसले तो सबके साथ होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि

आमीन। अभी आप हरिहरन की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे, कलाम था नसीम शहर का। सामीन, वक्त की पाबंदी एक कारगर नुस्खा है जो शख्सियत को चार चांद लगाता है और हमें कामयाब बनाता है। हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त बेश कीमती होता है, जो गुज़र जाता है तो पलट कर नहीं आता। लिहाजा अपने कामों को वक्त पर पूरा करें, वक्त ज़ाया ना करें। सुस्ती और काहिली से वक्त को बर्बाद करेंगे तो वक्त हमें बर्बाद कर देगा। वक्त के पाबंद लोग अपनी मेहनत से सही वक्त में अपनी मंजिल पा लेते हैं। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी मेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। आइए सामीन, लता मंगेशकर की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है साहिर भोपाली का।

सामीन, अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था साहिर भोपाली का। सामीन, बाअख्लाक होना और सच बोलना आला आदतें हैं जो शख्सियत साजी में नुमाया किरदार अदा करती हैं। अच्छे अख्लाक का हर शख्स गिरविदा हो जाता है, लोग इज्जत और एहतराम करते हैं। बाअख्लाक शख्स दूसरों को इज्जत देता है, नरमी और मुलायमत से पेश आता है। इसी तरह सच बोलने वाला भी सबकी नज़रों में सुरखरू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच बोलने से वक्ती नुकसान हो जाता है, मगर ये खूबी वक़ार का बाइस बनती है, लोग एतमाद करते हैं। फिर आज मुझे तुमको बस इतना ही बताना है, फिर आज मुझे तुमको बस इतना ही बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। आइए सामीन,

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा के दौरान आज श्री सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
2: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर, और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के

0: यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है, ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है, इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित मनगढ़ंत दावे और ईरान अमेरिका मध्यस्थता के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावा किया है कि ये AI से बनाया गया है। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief

गुमशुदा व्यक्ति का नाम है मैंग तोमर, पुत्र ब्रिजपाल तोमर। मैंग पुरुष हैं, इनकी उम्र है 25 साल, शरीर सामान्य, कद 172.5 सेंटीमीटर। ये ऋषिकेश के आसपास घूमने गए हुए थे और गायब हो गए हैं। इनके बारे में, यानी कि मैंग तोमर के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अमित कुमार, ये पुरुष हैं। अमित की उम्र है 23 वर्ष, शरीर सामान्य, कद है 5 फुट। इनके बारे में भी कोई सूचना मिले और देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंकुर, बालाजी कोऑपरेटिव ऑफिस, अंकुर विहार लोनी, गाजियाबाद से लापता हैं। शमद, पुत्र अनवर। शमद की उम्र है 9 वर्ष, ये पुरुष हैं। शरीर मध्यम, कद है 3 फुट। इन्होंने सफ़ेद कमीज, हरा पजामा और पैर में हवाई चप्पल पहनी हुई है। ये अपने घर से 12 मई 2026 से शाम 2 दयालपुर दिल्ली से लापता हैं। अगले गुमशुदा हैं वसीम, पुत्र सलीम। वसीम की उम्र है 22 साल, ये पुरुष हैं। इनका रंग है गेहुआ, चेहरा गोल, शरीर पतला है, कद 5 फुट 6 इंच। ये 8 मई 2026 से मुस्तफाबाद दिल्ली से लापता हैं।

इनका रंग है गेहुआ, चेहरा गोल, शरीर पतला है, कद 5 फुट 6 इंच। ये 8 मई 2026 से मुस्तफाबाद दिल्ली से लापता हैं। अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं सुमैया पुत्री रफी खान। सुमैया की उम्र है 25 साल। ये स्त्री हैं, शरीर सामान्य, रंग सांवला, चेहरा लंबा। सुमैया का कद है 4 फुट 8 इंच। जब ये गायब हुई थी तो इन्होंने हरे रंग का सूट पहन रखा था। ये 12 मार्च 2026 को अपने घर से बिना बताए चली गई हैं। जगह है मुस्तफाबाद दिल्ली। और अंत में ये गुमशुदा व्यक्ति का नाम है राबिया उर्फ सोना। पिता का नाम है मोहम्मद इनाम। राबिया की उम्र है 21 वर्ष। ये महिला हैं, शरीर मजबूत। इनका कद है 5 फुट 2 इंच। ये 21 मार्च 2026 से दयालपुर दिल्ली से लापता हैं। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि कोई सूचना आपके पास है या सूचना मिले तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने या फिर 112 नंबर पर आप कॉल करके इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना दे सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं आइए अब आपको आज इस चैनल पर प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। बस अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 4:20 पर आप सुन सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। शाम 4:30 पर कार्यक्रम होगा परिक्रमा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:10 पर। खेलों के शौकीन कार्यक्रम सुन सकते हैं खेल खिलाड़ी शाम 5:30 पर। संस्कृत वार्ता कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:10 पर।

आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम कृषि जगत। गजल और कव्वाली के शौकीन श्रोता सुन सकते हैं ये कार्यक्रम शाम 7:30 पर। रात 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष नाटक 9 दशकों के 9 रस।

0: National Horticulture Board, NHB, under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, has extended the last date for submission of applications for deputation posts, including Senior Administrative Officer, Junior Translation Officer, and Personnel Executive. The vacancies are in various pay levels as per the 7 CPC. The revised last date for receipt of applications through proper channel is 8th June 2026. Detailed eligibility conditions, prescribed application format, and the other terms are available on the NHB website under the Tenders and Vacancies section. Do refer to the official website, that is at www.nhb.gov.in. Kandla Special Economic Zone has invited applications for the post of an appraising officer, Group E, gazetted on deputation basis at Gandhidham. Two tentative vacancies available in level 8 as per the 7 CPC. Eligible officers of the Central Board of Indirect Taxes and Customs with experience in customs, central excise or GST work may apply. Applications along with RPAS, vigilance clearance, integrity certificate and other required documents must be forwarded through proper channel within 60 days from the date of advertisement in the employment news. Detailed information is available on the official website, that is at www.kases.gov.in. I repeat, the website is www.kases.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद नाम है सहायक प्रोफेसर, पदों की संख्या 6 है, जिनमें से 3 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार विस्तृत विवरण देखने के लिए देख सकते हैं वेबसाइट apply.nibmg.ac.in। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं 2026faculty recruitment@nibmg.ac.in। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या MS 54 के अनुसार विश्वविद्यालय में 523 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जारी और दिनांक 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित शिक्षक भर्ती अधिसूचनाएं

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहां यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। यह बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूट

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, हम आ गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। 5:40 तक हमारा और आपका बना रहेगा साथ। सुनेंगे लोकगीत और कुछ गैर फिल्मी गज़लें भी, साथी होंगी बातें भी। तो क्यों ना आज हम सबसे पहले बातें करें। बातें हम आपसे करेंगे, आपकी और अपनी। जी हाँ, हम और आप का जो वर्तमान जीवन है वो युवा वाला जीवन है, युवा का जीवन है, और युवा जीवन में कई चीज़ महत्व रखती हैं। अब समय प्रबंधन को ले ही ले अगर, तो समय प्रबंधन हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और महत्वपूर्ण है ये विषय। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के भविष्य की नींव होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस जीवन में पढ़ाई, खेल, परिवार, मित्र और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक होता है। ये संतुलन तभी संभव है जब विद्यार्थी समय का सही प्रबंधन करना सीख लें। आप जानते हैं दोस्तों के समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो विद्यार्थी समय का महत्व समझते हैं वे अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। वे विद्यार्थी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दे पाते हैं। अब बात करें कि समय प्रबंधन का अर्थ क्या है, तो आपको बता दें कि हर कार्य को उचित समय पर और योजना के अनुसार करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन का एक समय सारणी बनाएं, पढ़ाई, खेल, विश्राम और मनोरंजन के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। कठिन विषयों को अधिक समय दें और मोबाइल तथा सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग से बचें। अच्छा समय प्रबंधन विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। परीक्षा के समय तनाव भी कम होता है, क्योंकि तैयारी पहले से व्यवस्थित होती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी समय का सही

उपयोग करना सीख लें तो सफलता उनके कदम चूमेगी। तो ये हुई आज की हमारी और आपकी बातचीत, और अब शुरू करते हैं लोकगीत आप तक पहुंचाना। तो सबसे पहले ये लोकगीत सुनिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, इस प्रोमो से पहले आप सुन रहे थे लोकगीत। आज जिन कलाकारों के गाए हुए लोकगीत आपने सुने, उनके नाम हैं क्रमशः श्याम मोहन मिश्रा, संगीता सिन्हा और विभा सिन्हा। दोस्तों, अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं गैर फिल्मी गज़लें। ये पहली गज़ल सुनिए, भूपेंद्र सिंह की गाई हुई।

आप सुन रहे थे चंदन दास के स्वर में ये गज़ल। अगली गज़ल हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई।

गुलाम अली की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गज़ल। और इसके साथ ही दोस्तों, तरुण कुसुम का आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा दोस्तों को संबोधित था कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपको बता दें श्रोताओं के इस समय के कार्यक्रम में यानी 5:40 पर जो फिल्म संगीत का आप कार्यक्रम सुनते हैं, इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं नई फिल्मों के गाने। तो आज हम आपको सुनवाते हैं नई फिल्मों के गाने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग

0: कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। पेशकश होगी सज्जाद अहमद खान की। विद्यापति गीत का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 6:15 पर। छह बजकर 25 मिनट पर आप सुनते हैं मैथिली संवाद। साढ़े 6 बजे गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा नन्हा मुन्ना राही। इसके तहत चर्चा सुनेंगे बच्चे, दैनिक दिनचर्या का पालन करें इस विषय पे। दूसरी चर्चा भी होगी, साथ ही 7 बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी मिट्टी जांच का महत्व। साथ ही मौसम संबंधित जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15।

रात 9:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम शब्द शिल्प। जी हाँ, शब्द शिल्प ये कार्यक्रम आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति होगी, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। तो समय याद रखेंगे, रात 9:30 बजे कार्यक्रम होगा शब्द शिल्प, और रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गानों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायज़ा। पेशकश होगी सज्जाद अहमद खान की, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री

0: के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाज फरमाइए हफ्तावार जायजा, पेशकश सज्जाद अहमद खान की है। सामेईन आदाब, जायजे के अहम इशारिये। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने मिथिला यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी और तरक्याती सरगर्मियों को सराहा। अली नगर में होने जा रहे ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन की तैयारियों के लिए निशस्त। दरभंगा में ज़िला शोरा कमेटी की तश्कीलें 9। और अब तफसील। मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने लोक भवन पटना में रियासत के गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, साबिक फौजी अफसर के सामने मिथिला यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी, तरक्याती सरगर्मियों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर मुश्तमिल तफसीली जायजा पेश किया, जिसे नहायत सराहा गया। उस मौके पर गवर्नर को बताया गया कि रवायती रियासती जामियात में डीजी लॉकर पर असनाद मुंतकिल करने में ललित नारायण मिथिला जामिया को रियासत भर में अव्वल मुकाम हासिल है और अब तक 11 लाख से जायद असनाद महफूज की जा चुकी हैं, जिस पर उन्होंने खुसूसी मसरत का इजहार किया और हिदायत दी कि 2020 ईस्वी से कबल की असनाद भी मुनज़्ज़म तौर पर अपलोड की जाएं। दरभंगा के अली नगर के तारीखी हाट मैदान में आइंदा 13 जून की शब मजवजा कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार की शाम एक खुसूसी निशस्त प्रमुख नुमाइंदा राजीव कुमार यादव की सदारत में मुनक़िद की गई। निशस्त में मुनक़िद होने वाले मुशायरे में शोराए कराम का एक पैनल तैयार किया गया, जिसमें नवाज़ देवबंदी, एएम तराज, लता हया, हाशिम फिरोज़ाबादी, सुफियान प्रताप गढ़ी, हिमांशी बावरा, निखत अमरोहवी, शंकर कैमूरी, तबरेज़ कासमी, किरण यादव, परवेज़ कासमी के अलावा बज़्म रहबर दरभंगा से ताल्लुक़ रखने वाले और चंद इलाकाई शोरा के नामों का इंतखाब मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया। इनमें से चंद शोराए कराम की शिरकत की उसी वक्त मंजूरी भी ले ली गई, जबकि बकिया शोरा से मुशायरे के अहम जिम्मेदारान रबते में लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि पैनल में शामिल तमाम शोरा की शिरकत को मंजूरी मिल जाएगी। निशस्त में मुनक़िद होने वाले मुशायरे में मेहमानों के नामों का भी इंतखाब कर लिया गया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िले के MP, साबिक MP, MLA, साबिक MLA, MLC, साबिक MLC और सियासी जमातों के सरबराह शामिल होंगे। इसमें किसी भी सियासी जमात के लोगों से कोई गुरेज नहीं किया जाना तय हुआ है। मुशायरे के बजट और इंतजामात के मौजू पर भी गौर व फिक्र किया गया और ज़िम्मेदारियां तकसीम की गईं। निशस्त में तारिक सफ़ी, ज़काउल्लाह निराले, वसीम अहमद नजमी, ज़फरुल्लाह सिद्दीकी, आसिफ आदिल, आसिफ आज़म, रफ़ीउद्दीन, अब्दुल बारिक लड्डू, अनिल कुमार यादव, सरपंच लाल मोहम्मद, शाहिद हाशमी, विद्यानंद यादव, चौधरी यादव और मुजाहिद फरीदी समेत कई लोग इसमें शरीक थे। मदरसा हमीदिया कैंपस से किला घाट दरभंगा में ज़िले के मुमताज़ सामाजिक कारकुनान, बेदार अवाम और दानिशवरों की एक अहम आम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर मोहम्मद मुमताज़ आलम एडवोकेट को इजलास की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी गई। इजलास में अराकीन ने मुश्तरका मशवरे से दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी के दस्तूर को बाकायदा मंजूरी दी। इसी के साथ ये अहम

फैसला भी लिया गया कि मोहम्मद मुमताज़ आलम एडवोकेट को दरभंगा ज़िला शोरा कमेटी का सदर मुंतखब किया जाए, जबकि मोहम्मद वसीम अहमद को सेक्रेटरी और शर्फ आलम तमन्ना को कन्वेनर की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही जायज़ा ख़त्म हुआ। आप समाअत फरमा रहे थे हफ्तावार जायज़ा, पेशकश सज्जाद अहमद ख़ान की थी। ये आकाशवाणी दरभंगा है। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और समित कुमार मल्लिक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: प्रोमो से नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी।

बैजू कुमार झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई नव दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट कलन। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के भागलपुरक तिलकपुर गाम में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझीक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होयबाक निमंत्रण दिलन। एहिसँ पूर्व श्री चौधरी कृषि आ किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कलन। एहि दरमियान राज्य में कृषि क्षेत्रक विकास के लऽ कऽ मुख्य रूप से चर्चा भेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपन दू दिवसीय दौराक बाद आई सांझ पटना आबि गेला। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, गया, नालंदा आ बक्सर समेत कतेको जिला में तेज हवाक संग मूसलाधार बरखा भऽ रहल अछि। कतेको ठाम ओलावृष्टिक खबरि सेहो अछि। पटना आ लगपासक इलाका सब में बिहाड़िक कारण कतेको ठाम गाछ वृक्ष आ बिजलीक खंभा उजड़ि गेल अछि, जाहिसँ आवागमन आ बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित भेल अछि। खेत सबमे लागल फसिलक संग संग आम आ लीचीक फसिलकेँ सेहो व्यापक नुकसान भेल अछि। बरखाक दरमियान ठनका खसबाक फड़ाक फड़ाक घटना सबमे 4 गोटेक मृत्यु भऽ गेल। पटनामे 2, औरंगाबाद आ गयाजीमे 1-1 व्यक्तिक मृत्युक खबरि अछि। एम्हर मौसम विभाग अपन पूर्वानुमानमे कहलक अछि जे अगिला 24 घंटाक दरमियान प्रदेशक अधिकांश भाग सबमे बरखाक सम्भावना अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अन्हर बिहाड़ि, बरखा आ ओलावृष्टिसँ भेल फसिलक क्षतिक सर्वे केर आदेश देलनि अछि। सोशल मीडिया पोस्टमे मुख्यमंत्री जनौलनि जे एहि सम्बन्धमे कृषि आ आपदा प्रबंधन विभागकेँ निर्देश देल गेल अछि, जाहिसँ प्रभावित किसान लोकनिकेँ समुचित राहत देल जा सकय। राजस्व आ भूमि सुधार विभागक मंत्री दिलीप जायसवाल राज्यमे 15 दिनक भीतर लंबित लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदन सभक निष्पादन सुनिश्चित करबाक निर्देश देलनि अछि। विभागीय सचिव जय सिंह एहि सम्बन्धमे सभ समाहर्ता लोकनिकेँ पत्र जारी कयलनि अछि। ई निर्देश त्रुटि जाँच स्तर पर लंबित आवेदन सभक शीघ्र निपटाराकेँ लऽ कऽ जारी कयल गेल अछि। श्री जायसवाल कहलनि जे मामूली तकनीकी त्रुटि सभक लेल आम लोककेँ परेशान नहि कयल जाय आ दाखिल खारिज प्रक्रियाकेँ सरल, पारदर्शी आ जवाबदेही बनाओल जाय। दरभंगा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस केर ठहराव आब सीतामढ़ी जिलाक बाजपट्टी आ डुमरा स्टेशन पर सेहो होयत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पत्रक माध्यमसँ सीतामढ़ीक सांसद देवेश चंद्र ठाकुरकेँ ई जनतब देलनि। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जनौलनि जे सीतामढ़ीक क्षेत्रकेँ बेहतर रेल सुविधासँ जोड़बाक लेल लगातार प्रयास कयल जा रहल अछि। ओ कहलनि जे दरभंगा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के परिचालन शुरू भेल छल। एकरा बाद स्थानीय लोक सब दिससँ बाजपट्टी, डुमरा, गाढ़ा आ रामवृक्ष बेनीपुरी स्टेशन पर ट्रेन ठहराबक मांग लगातार उठाओल जा रहल छल। ओ जनौलनि जे फिलहाल बाजपट्टी आ डुमरा स्टेशन पर ठहरावक स्वीकृति भेट गेल अछि, जखनकि आन स्टेशन सब पर सेहो ठहराव सुनिश्चित करबाक लेल प्रयास जारी रहत। सांसद एहि निर्णय लेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवक प्रति आभार व्यक्त कयलनि। भागलपुरक जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी कहलनि जे विक्रमशिला सेतु पर 7 जून सँ पहिने गाड़ी सभक परिचालन शुरू भऽ जायत। बेली ब्रिज निर्माणक निरीक्षणक पछाति संवाददाता सभसँ गपशप मे श्री चौधरी कहलनि जे तकनीकी ऑडिट केर रिपोर्ट पर एकटा आओर बेली ब्रिज केर निर्माण करवाओल जा रहल अछि। ओ कहलनि जे निर्माण काजमे सीमा सड़क संगठन आ पुल निर्माण निगमक अधिकारी आ कर्मी लोकनि लगातार जुटल छथि। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रममे आइसँ 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर केर आयोजन कयल जा रहल अछि। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जनौलनि जे शिविरक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूक विचारधारा एवं हुनक सिद्धांत सबकेँ जन जन धरि पहुँचायब अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जापान में आयोजित होयवला पैरा एशियन गेम्स लेल क्वालिफाई करबा पर राज्यक प्रतिभावान खिलाड़ी शैलेश कुमार आ हिमांशु यादवकेँ बधाई देलनि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी कहलनि जे ई पूरा राज्यक लेल गर्व आ सम्मानक क्षण अछि।
समस्तीपुर जिलाक हसनपुर थानाक थानाध्यक्ष अकमल खुर्शीद के प्राथमिकी दर्ज नहि करबाक आरोप में निलंबित कऽ देल गेल अछि। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह मामला के गंभीरता से लैत थानाध्यक्ष के तत्काल प्रभाव से निलंबित करबाक संगहि विभागीय कार्रवाई के निर्देश देलनि अछि। सुपौलक भीमपुर थानक क्षेत्र में पुलिस एकटा ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजाक संग 2 गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। बरामद गांजाक दाम

0: 40 लाख टाका बताओल जा रहल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत नन्ना मुन्ना राही सुनिहार सब धियापुता संग समस्त श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार अभिनंदन संग गोर लगे छी लाल बहिन
1: खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई आ संगे धियापुता लोकन के सेहो कार्यक्रम में स्वागत छन। मिहिर भाई आय से शुक्र दिन है आ शुक्र दिन अपना सब अपन नन्ना भुटका के लिए कार्यक्रम लगे छी नन्हा मुन्ना राही आ आई में हम सब अपन धियापुता से खूब गप करे छी एहन गप करे छी जैसे हमर धियापुता लोकन लाभ उठावे न त सबसे पहिने त ई कहबन जे धियापुता लोकन त छथ देश के भविष्य छथ आ हमर घर के सेहो धरोहर छथ त सबसे पहिने त ओ खूब मन लगा के पढ़ैत नीक बनैत एकटा नीक नागरिक बनैत बाद में जे किछ बनता से छथ सबसे पहिने नीक मनुख बनैत आ संस्कार सीखैत आ अपन कार्यक्रम माने दिनचर्या के से पालन हुनका नियमित रूप से करबाक चाहिए जे दिनचर्या के नियमित रूप से पालन करता वो सदत आगू बढ़ता।
0: ठीके कहलिए लाल बहिन देखियो धियापुता जे छथ न ओ सानल माटि के थुम्बा जकां छथ ओ सानल माटि के अपना सब जे जे माटिक वस्तु बना ली चाहे ओ दीप बना ली कोनो खिलौना बना जे आकार देबे ओहि आकार के भऽ जाइ छथ तो धियापुता के संस्कारी बने वास्ते उनका दैनिक दिनचर्या ठीक रहन ओ ननपन ही से अपना सब अभ्यास लगे हुए तो आगा जा के ओ एकदम हुनकर जे दिनचर्या या हुनकर जे संतुलित स्वास्थ्य रहतन सब जे छे से संतुलित रहतन हुनकर व्यवहार जे रहतन से नीक रहतन तो ई सब संस्कार जे छे से बच्चे से अपना सब के देनाय उचित छे।
1: बहुत निक गप अहाँ मीर भाई कलम एतबारे देखियो मीर भाई एखन बहुत रास स्कूल में छुट्टी भ गेलै अगर मी छुट्टी आ बहुत ठाम दू चार दिन में भ जेतै त धियापुता लोकन घरे में रहता त घरे में रहता त दिनचर्या के पालन त निश्चित करबा एहि पर हमरा याद पड़ल आब ई नै जे आब विद्यालय नै जेबाक अइ त आब 10 बजे उठब त ई त बड गड़बड़ बात ई नै हेबाक चाही ओ जहिना पहिने उठै छलहुँ हैं तहिना उठब पढ़ाई ओहिना करब आ ओहिके अतिरिक्त जे समय बचैए तऽ दादा दादी लगमे नाना नानी लगमे जाकऽ खिस्सा बिहानी सुनब मोबाइलसँ दूर रहब आ ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी सुनब तऽ अहाँके ओहिमे रुचि बढ़त संस्कार नीक हैत अहाँ जहन अपन से नाना नानी दादा दादी लगमे रहब तऽ नीक संस्कार सीखब एखन संस्कार नीक सिखबाक बड़ आवश्यकता छै किया तऽ बच्चा सब एकल परिवार में रहै छथि माता पिता के टाइम नहि रहै छनि किया तऽ ऑफिस रहै छथिन तऽ बच्चा खाली मोबाइल से खेलै छथि तऽ ओ नीक बात नहि भेलै आ जहन नाना नानी लगमे रहता तऽ अपन परिवार अपन चचा चाची दादा दादी पिसा पिसी सब संबंध के बुझता ओहिसँ हुनका प्रेम बढ़तन आ ओ प्रेम जखन बढ़तन तहने ने परिवार में जोड़ कर नीक से रहता मिल कर रहता।
0: ठीके कहले लाल बहन देखियो कहले जे दिनचर्या ठीक रहते दिनचर्या जे ठीक रहते तो स्वस्थ रहते
1: निश्चित रूप से
0: स्वस्थ जखने रहता तो हुनकर बुद्धि विकसित रहते विकास करते
1: सब काज में मन लगते
0: सब काज में मन लगते तैं शुरू में जे स्कूल रहल तो दिनचर्या ठीक रख आ नहीं आई छुट्टी छे तो कोनो दिनचर्या उठब ई तो स्वास्थ्य पर असर पड़ते आ जखने स्वास्थ्य पर असर पड़ते तो हुनकर स्वभाव में असर पड़ते
1: मुनखिन
0: भ जते तहे तो दिनचर्या तो सदिखन बच्चा सबके एके रंग रखबाक चाहिए आ ई एके रंग रखे वास्ते उनका अभ्यागत जे छै उनका माता पिता जे छै
1: ध्यान देबऽ पड़तै नीक संस्कार शिष्टाचार जे हमरा सबके पैघ गेला तऽ हुनका प्रणाम करी हुनका से केना गप करी ई नहि उझट पाना वाला गप करी तऽ ई सब तऽ अभिभावक माता पिता लोकनि के सिखाबऽ पड़ै छै ने तखने बच्चा तऽ छोट छथि हुनका तऽ जेना सिखेबनि अहाँ किनको कहबनि प्रणाम करैला तऽ करता नहि कहबनि तऽ ओ नहि बुझता तऽ नहि करता।

0: देखियौ लाल बहिन, दिनचर्या ठीक रहे एहि वास्ते सबसे आसान तरीका छै सूर्योदय से पहिने उठो।
1: निश्चित रूप से
0: सूर्योदय के बाद जे उठै छथि ने हुनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया
1: नहि रहै छै,
0: तऽ सूर्योदय से पहिने थोड़े काल पहिने कम से कम आब एखन सूर्योदय पौने छओ बजे होइए, 5:30 बजे तक बच्चा सबके उठि जेबाक चाही। ओहि वास्ते अभिभावक 5:30 बजे से पहिने अभिभावक उठथिन तखने ने बच्चो उठथिन बाबू उठू भोर भऽ गेलै, तऽ दिनचर्या ठीक रखै के सबसे सरल आ सटीक उपाय छै सूर्योदय से पहिने उठब आ समय से सब काज करब। तऽ ई सब जे छै से अभिभावक के रखब, तऽ हुनका जे छनि से प्रेम से स्नेह से हुनका दिनचर्या पर जे नहि बौआ अखन ई नहाय के बेर भऽ गेल, अखन नहा लिअ, अखन ई नाश्ता कए लिअ, तऽ बच्चा सब कतेक बच्चा जिद्दी स्वभाव के रहै छथिन तऽ हुनका डाँटि
1: प्रेम
0: से ओकरा स्नेह से ओकरा बुझेथिन तऽ जल्दी बुझि जाइ छथिन। तऽ दिनचर्या ठीक रखैके वास्ते से बच्चा सबके एकदम सही समय पर उठबाक चाही, सही समय पर जलपान करबाक चाही। आ देखियौ अखन तऽ छुट्टी भऽ गेल यऽ, कतेक अभिभावक देखै छियनि जे बच्चा जे इसकुल जाइ छथि तऽ ओ हुनका अपने सब पहिरेतै तऽ कपड़ा जूता पहिरा से नहि, जखन बच्चा 5 साल से बेसी या 7 साल
1: अपने हुनका करऽ देबाक चाही सिखता तखन ने, जेना एला इसकुल सँ अपन ड्रेस खोलि कऽ खुट्टी मे टाँगैत अपन लंच बॉक्स के राखैत जतन जगह ओकर होइत तऽ ई सब छोट छोट काज करऽ देबाक चाही। ई नहि जे लार प्यार मे दुलार मे अहाँ हुनका जे नहि सबटा काज हम ही कऽ देब अहाँ बैसू, ताहिसँ बच्चा आलसी स्वभाव के भऽ जेता, तऽ एहनो नहि हेबाक चाही। अहाँ
0: देखै छियै लाल बहिन जे बच्चा सब जे इसकुल जाइ छै थोड़े घर से कनिके दू 2-4 मिनट जे पर बस स्टैंड रहै छै तऽ बच्चा के छोड़ जाइ छथिन, तऽ नमहर बच्चा सब 8-10 सालक बच्चा सबके देखिन जब अपने हाथ डोलबे जेतै तऽ अभिभावक हुनका माँ या पिता बैग लेने
1: नहीं नहीं बैग हाँ हुनका पर दियो हाँ संगे जइयो ई बात ठीक छै, लेकिन किछ बोझ तऽ हुनका दियो तहन ने बुझथिन, आना तऽ ओ भऽ जेता की कहै छै जे रौद बसात सब सब बच्चा के तपऽ दियो तहन ओ बच्चा अहाँके नीक मनत वर्षा के पानि सँ, नहि तऽ अहाँ नहि किछु निकलऽ देबै तऽ ओकरा बोखारे लागि जेतै, मोने खराब भऽ जेतै, रौद मे माथे दुखाय लगतै, तऽ ओकरा हर तरह तपबियौ तहने ओ एकटा नीक बनत। तऽ ई सब से अभिभावक के ध्यान देबऽ पड़तनि। आ देखियो आब अपन सबके कार्यक्रम मे आब धियापुता के कनि मनोरंजन सेहो हेबाक चाही ने, खाली पढ़बे करता काज करता से तऽ नहि, तहन तऽ मोन उबि जेतनि, तऽ किछु एहन गीत नाद सुनता जाहिसँ हुनका सबके आर जोश आ जज्बा सँ काज करता। तऽ सुना दै छनि एकटा सुन्दर संगीत।

0: भने नेनपन के दिन रसगुल्ले छे, ठीके नेनपन के दिन तो बहुत निक होइ छे, ई दिन लौट के नहीं आबै छे। आ एहिमे तो धियापुता बादशाह होइ छथि, राजा होइ छथि, हुनका किछु चिंता नहि फिकिर आ एकदम मौज मस्ती करै छथि, तऽ ई तऽ आनंदक दिन छै। एहिमे जहन पढ़ाई लिखाइ करऽ पड़ै छै, जिम्मेवारी अबै छै, तहन ने चिंता होइ छै, तनाव होइ छै।
1: सुन्दर संगीत मृदुला
0: मिश्र, हाँ,
1: आब अपना सब किसले सुनै छी, वाद्य ध्वन्यांकन पर आधारित सरस्वती कन्या मध्य विद्यालय से सुनै छी, वाचन आ संकलन छनि अस्तेश कुमार झा आ प्रस्तुति छनि असद दाऊद।
0: तऽ सुनी
2: धियापुता।

0: पी वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बजवा से जखन सबटा जीव संतुष्ट भ जाय छथि तखन प्रिय वचने बजवाक चाही। एहन वचन बजवा में कंजूसी किया करब। आजुक दिन हम आयल छी सरस्वती कन्या मध्य विद्यालय गुल्लोवाड़ा। आजुक दिन एतुके बच्चा सब से करब गप सप और करब हिनके संग
1: नाम छी अहाँके।
2: मेरा नाम मानसी कुमारी।
1: अहाँ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
2: क्लास 5।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
2: माय मिरेकल मदर।
1: सुनो।
2: मॉम आई लुक एट यू एंड आई सी ए वर्किंग मेकर। यू आर फेलिंग लव विदाउट लिमिट। योर एबिलिटी टू सूट माय एवरी हर्ट। द वे यू आर ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली एवरी आवर एवरी डे मेक मी सो ग्रेटफुल। दैट्स आई एम योर एंड यू आर माइन। विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट विथ एंड्यूरिंग पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ यू गिव सो मच फॉर for me sometime at your expense. You are my teacher, my comforter, my encourager, appreciating all for giving all. Sometime I took you for granted, mom, but I don't know and I never will again. I know that everything I am today related to you and your loving care. I gaze in wonder as I watch you being you, my miracle mother.
1: बहुत सुंदर। और ई अपना सब बुझते छी जे माँ जे होइ छथिन से निश्चित रूप से हुनकर क्रियाकलाप जे होइ छनि से तऽ जादुई होइ छै। देखै छियै भोर से उठते देरी जे छै से हुनकर काज चालू रहै छनि और साँझ तक अहिना चलैत रहै छनि। की नाम छियै अहाँके?
3: खुशी मंडल।
1: अहाँ कोन वर्गमे पढ़ै छी?
3: 7वीं।
1: आज कार्यक्रममे अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
3: संस्कृत का श्लोक उसके अर्थ
1: सुनाओ।
3: यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे।

0: अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।
1: आजे कार्यक्रम आके सुनावा चाहे छी
0: श्री विचति
1: सुनो।
0: आशुतोष शशांक शेखर चंदम दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार विनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा निरन्यकार स्वरूप काल धर्मा योगेश्वरा दया जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरे हर काफ साफ कवि साफ तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगत पति अनुकर्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जयति जगदीश्वरा। आशुतोष शशांक शेखर चंदमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। मेरा नाम महादेव कुमार।
1: आज कार्यक्रम की सुनावा चाहे छे
0: चांद का कुर्ता
1: सुनो।
0: हटकर बैठा चांद देख दिन माता से बोल आशीर्वाद हुआ मुझे उनका मोटा एक जिन बोला सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठो ठिठो किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का ना हो और तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का बच्चे की सुनबात का माता ने अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे भर तुझको जाड़ू टूटे जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाम में कभी नहीं तुझको देखा करती हो कभी एक अंगूठा चौड़ा कभी एक फुट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा बढ़ता बढ़ता उस किसी दिन ऐसा भी करता नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता आप तो ही तो बता नाम तेरे के सोल दिया सीधे जी मिला जो रोज बदल गया।
2: जय निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी सोचे फिर यह मन में लगी आह क्यों मैं घर छोड़ कर चली। अंजना कुमारी।
1: आज कार्यक्रम सुनाना चाहे छे
2: एक कविता
1: सुनो।
2: वह चले आवा वह चले आवा न तू देखे ना मैं देखू पर पत्ते ने तो देख लिया वह ना देखू से बनाते क्यों वह चले आवा वह चले आवा।
3: दीपिका कुमारी।
1: आज कार्यक्रम की सुनावा चाहे छे
3: पुष्प की अभिलाषा
1: सुनो।
3: चाने मेशो मालो के गाने में गुता जाओ चाने प्रेमी मालो के प्यारी कोलर जाओ चाने सम्राटों के सब पर है हरी डाली आओ चाने देवों के सिर पर चढ़ू बाग पे इतलाओ मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ में तुम देना टेक मत भूमि पर चीर चाहे जिस पर जाने वीर अनेक।
1: भगवान के अर्पण करे छे कोई पुष्प के अभिलाषा की छे जे हमरा ओ पद पर फेंक दे जाए जे रकम शरीर पर लग जाए छे। कोकी नाम छे अहाँ
4: वैष्णवी कुमारी।
1: कोन वर्ग में करे छे अहाँ
4: फाइव।
1: आज कार्यक्रम की सुनावा चाहे छे
4: द ब्लाइंड बीगर
1: सुनो।
4: इस मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल इफ आई एम नॉट टू लेट आई स्टैंड टू वॉच द देव मैन बिसाइड द टेंपल गेट ही ऑलवेज सिट्स इन दैट सेम प्लेस ही हैज नाउ हियर टू लिव ही सिट्स एंड क्लाइंग्स हैज बीन रोल एंड क्राइस्ट टू ऑल टू गिव आई मस्ट नॉट नॉक हैज क्राई ही हैज नो फ्रेंड टू कीप हिम गुड एंड टाइटल दैट इज व्हाई ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड ही कैन नॉट सी ईस्टर्न बिकॉज दैट बीगर मैन इज ब्लाइंड एंड हाउ डू His voice is hoarse and loud and how he cannot see. God loves that poor old beggar man as much as he loves me.
1: सत्यम
5: कुमार।
1: आप भी वर्ग में करे छे
5: सातवीं कक्षा।
1: आप की सुनावा चाहे छे अभी कार्यक्रम में
5: पर्यावरण बचाने के बारे में
1: सुनो।
5: मैं सत्यम कुमार सरस्वती कन्या मध्य विद्यालय गुल्लूवाड़ा दरभंगा सातवीं कक्षा का छात्र हूँ। आज सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पर्यावरण बचाने के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पानी वायु ये सभी हमें जीवन देते हैं।

0: आज हमें नष्ट कर रहे हैं। पेड़ काटना, प्रदूषण फैलाना और जल की बर्बादी है। हमें इन्हें बचाना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और पानी बचाना चाहिए। हमारा छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।
1: एकदम सही जब कह रहा हूँ, हमारा समाज के एकटा छोट प्रयास बहुत पैघ बदलाव आनि सकैत अछि। की नाम छी अहाँके?
2: शिवाजी कुमार।
1: वहाँ कोन वर्ग मे पढ़ै छी?
2: कक्षा 7।
1: आगे कार्यक्रम मे अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
2: हम पक्षी उन्मुद रहेंगे, पिंजरा बनने का पाएंगे, गलत टकरा कर भूखे पंख टूट जाएंगे। हम बहुत जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास से। कई बार ये कटुकनी बोली कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ग श्री खन्ना के बंधन में हम अपनी गतिमान से फूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगुनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीरव की सीमा पाने लाल कैसी चोच को सुखते थे अनार के दाने। होती सीमा छिथिन में एक पंखों की होरा हो रही, या तो छिथिन मीरा बन जा रही या तंती सासों की डोरी। निर्णा तो चाय टहनी का आशय सिंह बनकर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अगर हमें बिघन न डालो।
1: वकील नाम छी अहाँके?
3: करण कुमार।
1: अहाँ कोन वर्ग में पढ़ै छी?
3: 7वीं।
1: आज के कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
3: शिक्षा के महत्व पर शाली भाषण
1: सुनो।
3: आज मैं शिक्षा के महत्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। भारत में शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे देश के विकास की कुंजी है। हमारे शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्य को समझता है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। भारत देश में लड़की के लिए सभी को शिक्षित करना आवश्यक है। पहुँचाने का संकल्प है।
1: वकील नाम छी अहाँके?
4: विजय कुमार।
1: अहाँ कोन वर्ग में पढ़ै छी?
4: 7वीं।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
4: कठपुतली।
1: सुनाओ।
4: कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलिया की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। लेकिन पहले ही कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। लेखक भवानी प्रसाद मिश्रा।
1: निश्चित रूप से कठपुतली का अगर धागा तोड़ दिया जाए तो धागा से टूटते कठपुतली खसि पड़ी है। निश्चित रूप से एक बाल मन का कौतूहल कविता में की बोलना चाहे छी?
4: डॉक्टर।
1: वकी नाम छी?
4: हर्षिता कुमारी।
1: आप कौन वर्ग में पढ़ी छी?
4: वर्ग 4।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहे छी?
4: देख तमाशा।

0: है जी बड़े पेट की भूख जगे, झूला झूलो 10 रुपए में, 5 रुपए में गुब्बारे लो, पैसा दे के कर्तव्य देखो जो कर लगते प्यारे।
1: की नाम छे यहाँ पे
0: सर्वी कुमारी।
1: आप गुरुवारों में पढ़ी छी?
0: चौथी कक्षा।
1: आज कार्यक्रम में आ की सुनावा चाहे छी?
0: जंगल में पिकनिक।
1: सुनो।
0: जंगल में चार पाल पिकनिक का सोड, बिल्ली बैठी घोड़े पर चली जंगल की ओर, चीटी रानी चिन्हिल गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाए, भालू ने जब था सचकर बंदर मामा आए, हिरन से खड़ा गिदा जमकर तुमने भूख लगा, खूब खाए हाथी ज्यादा पेट में तवाई बाधा, चूहे ने इलाज बताया गरम गरम पानी पिया। धन्यवाद।
1: पिकनिक आईना मनाया जाए छे, पिकनिक में खुशी खुशी में अपना सब खाना तो बहुत खा ले छे, लेकिन जब बाधा आवे छे तो इना गरम पानी पीवा पड़े छे। की बनो चाहे छे यहाँ?
0: पुलिस।
1: बहुत बढ़िया। की नाम छे यहाँ का?
2: मानसी कुमारी।
1: आप कौन वर्ग में पढ़े छे? आज कार्यक्रम में आप की सुनावे चाहे छे?
2: आया बादल।
1: सुनो।
2: उमर कुमार कर आसमान में हुआ, देखो मडराया बादल, आया बादल आया बादल, देखो देखो भालू काला हाथी मोटा तत्व वाला, कितना रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल, आज संदेशा किसका लाया, किस मुटे पर आया छाया, प्यारा समन भाया बादल, आया बादल आया बादल, वन उपवन सब गाँव नर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल, पूरी सावन कचरी गाता रिम झिम झिझी के सुना तलो, पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल, दादुर मोर पपिया बोले के दो कमन हसे डोले, जैसे इल्हर आया बादल आया बादल आया बादल, नीली चादर एक टांग के किन्नो से कुछ रंग मांग के, इंद्रधनुष रच राया बादल आया बादल।
1: की नाम छे यहाँ पे?
3: हमारे नाम से प्रामाणी एच।
1: आप कौन वर्ग में पढ़े छे?
3: हम वर्ग 7वीं की छात्रा छी।
1: आज कार्यक्रम में आ की सुनावा चाहे छी?
3: हम गीत कविता प्रस्तुत करना चाहे छी।
1: सुनाओ।
3: इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, दीप बुझे अजीत आंखों की उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तेज जहां फूल खिलेगा हमको तुमको त्राण मिलेगा,

0: हाँ तो एकरा अपना सब किछु लए सुनै छलहुँ हँ। आशा करै छी धियापुता लोकनिके खूब नीक लागल हेतनि। आ देखियौ बच्चामे जे प्रतिभा छै एहि तरहे ओ निखार होइ छै। आ हम तऽ कहबनि अपन धियापुता सबके, एखन जेना गर्मी छुट्टी भऽ रहल छै, कठिन भऽ गेलै तऽ धियापुता सब पढ़ाइ तऽ करिते छै, ओहिके अतिरिक्त जाहि बच्चाके एखन समय रहतनि बेसी, विद्यालय तऽ रहतनि नहि, तऽ जाहिमे रुचि होइन, जेना पेंटिंग करै छथि, किनको देखबनि जे गीत सीखैके रहै छनि, किनको देखै छियनि जे मने हारमोनियम बजेता, तबला बजेता, जिनका मने जाहिमे रुचि होइन ओ एखन सीखैत, किया तऽ एखन तऽ समय रहतनि, विद्यालय नहि जाय पड़तनि, तऽ ओहिमे ओ से ई सब चीजके एखन लाभ लऽ सकै छथि। किनको देखबनि पोस्टरमे बढ़िआँ बढ़िआँ पेंटिंग कऽ कऽ एतेक सुन्दर बनेता जे अहाँ मंत्र मुग्ध भऽ जायब ओ देख कऽ, तऽ ओ सब काज जे छै से एखन कऽ सकै, ओहिसँ समयो पास भऽ जेतनि आ हुनका मोनो लगतनि, आ एहिमे जिनका रुचि छनि तऽ ओहिसँ खूब नीक नीक कऽ सकै छथि, ओहिमे आगू बढ़ि सकै छथि। जिनका खेलसँ रुचि छनि ओ एखन खेला सकै छथि, मौसम जहन नीक रहै, रौद नहि रहै, साँझमे भिनसरमे उठि कऽ खेल सकै छी अहाँ। ई सब काज जे छै
1: बाह्य एक्टिविटी जे छै,
0: हाँ हाँ,
1: पढ़ाइके संग संग
0: जरूरी छै, जरूरी छै,
1: एकटा कहावतो
0: छै, तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता
1: है, जे पढ़ल बेटा नीक, घूमल बेटा नीक, तो निश्चित तौर पर घूमल बेटा नीक होइ छै, किताबी नॉलेज खूब रहल, खूब ज्ञान रहल, हुनका बाहर खेलै के नहि लुर छै, नहि कोनो पेंटिंग लुर छै, नहि ककरो से बजे भूके के लुर छै, नहि गीत गबे के लुर छै, खाली पढ़ाइए
0: तऽ नहि होइ छै,
1: पूरा संपूर्ण विकास
0: नहि कहे। अहाँ जे कहलहुँ मीर भाई, तऽ हमरा याद पहिने कहै छै थोथी के पोथी के संग थोथी सेहो रहबाक चाही, अपना सबके गाँव घरमे ई कहावत छै, कतेक देखबै कतेक चरफर रहत, सबकिछुमे चरफर, आ कतेको अबितो रहतनि तऽ ओतेक बाजि नहि सकता, पुछबनि तऽ अबैत रहता ने, लेकिन मुदा बाजि नहि सकता। तऽ देखियौ हमर सबके कार्यक्रम जे आब नन्हा मुन्हा रहैए।

0: समेटबाक बेर भऽ गेलै, एकरा समेटि एहिठाम से किसान भाइ लोकनिके कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। तऽ सबसँ पहिने तऽ किसान भाइ लोकनिके स्वागत करै छियनि आ नमस्कार करै छियनि। आ देखियौ मिहिर भाइ, किसान भाइ लोकनिके तऽ एखन मेघ भेल, एखन तऽ काजमे एकदम हेता जे केहन काज एखन पहिने करबाक चाही ओकर तैयारीमे एकदम जुटि गेल हेता। आ कोनो काज करऽसँ पहिने तऽ सबसँ पहिने जे कोनो फसल लगबै छथि किसान भाइ, तऽ हम तऽ कहबनि जे माटि जाँच सबसँ आवश्यक छै। बिना माटि जाँच केने कोनो फसल नहि लगेबाक चाही, किया तऽ ओहिमे कथीके कमी छै से अहाँ केना बुझबै जब तक जाँच नहि करबै। जाँचके बादे ने पता चलत जे एहिमे कोन चीजके कमी छै, जकर कमी छै ओ पूरा कोना हेतै, तखन ओ फसलके उत्पादन नीक हैत। ओना लाख प्रयत्न करब, खर्चा करब, मेहनत करब, मुदा उत्पादन नीक नहि हैत।
1: देखियौ लाल बहिन, अपन देश जे यए भारत कृषि प्रधान देश छै आ सभक जीविकोपार्जन प्रायः खेतिए अछि, खेतिए बाड़ी कए कऽ अपन सबके बेसी लोकक जीविकोपार्जन होइ छै। तऽ लाल बहिन, खेती पथारीमे देखै छियै किसान भाइ सब कतेक मेहनतसँ खेत तैयार करै छथि,
0: फेर नीक बीया आनै छथिन,
1: उर्वरक दै छथिन,
0: पटौनी
1: करै छथिन, तैयो जे उपजा
0: ओतेक मेहनत मन झूठ जमान भए छनि।
1: तऽ एहिसँ पहिने कोनो फसल लगबैसँ पहिने ओकरा मृदा परीक्षण अवश्य
0: करबे केल हमरा पहिने बड़ा आवश्यक छै।
1: तऽ देखियौ जे किसान भाइ लोकनि माटिक जाँच जे छै से अवश्य करा लेत। ओहि माटिक जाँच करबै वास्ते खेतक माटिमे मौजूद पोषक जे छै ओ करेलासँ बुझबामे अबै छै जे मौजूद पोषक तत्व जे छै
0: कमी छै,
1: कोन खाद कतेक देवाल छै, कम उचित खाद देथिन कमो देथिन तऽ बढ़िया।
0: आ माटि जाँच कोना कराबी, एकरो एकटा तरीका छै मीर भाइ, जेना माटि जाँच लए अहाँ देलियै प्रयोगशालामे तऽ एके ठामके माटि नहि देबाक चाही। खेत जेना बड़का कोला अइ तऽ ओकर दू तीन जगहसँ देबाक चाही, छाहरिवला ठामके नहि देबाक चाही, बीचसँ मने खुरपीसँ खोदि कऽ आ कनि बेसी गहीर खोदि कऽ देबाक। ई नहि जे उपरेसँ लऽ लेबै तऽ नहि बुझबामे आयत। तऽ ई सब जे तरीका छै ओ ढङ्गसँ कऽ कऽ आ नाम पता सब लिख कऽ तहन देबाक चाही कि।
1: देखियौ लाल बहिन, ई तऽ कहले जे नमहर कोला तऽ आठ दस ठाम
0: हटिकऽ
1: छओ इंची गहीरमे सँ माटि ठाम
0: लेबाक चाही
1: आ तकर बाद सबटा माटिके
0: मिला दी,
1: मिला कऽ तहन थोड़े एक मुट्ठी 50-100 ग्राम
0: झोरामे
1: सूती कपड़ामे लऽ कऽ ओहिपर
0: नाम पता
1: अपन नाम लए कऽ तहन माटिक प्रयोगशाला दऽ देबै तऽ ओ पता चलि जाइ छै खेतमे ई
0: माटि, ओ लिखल रहत जे एहिमे एकर कमी छै तहन ओ चीज दियौ आ तखन ओ फसल लगाउ। तहन अहाँके देखियौ ने केहन अहाँके सब मेहनत साकार हैत आ अहाँके एक नम्बर अहाँके से उत्पादन हैत, मन प्रसन्न रहत।
1: सही बात छै। तऽ माटिक जाँच किसान भाइ अवश्य करा लैत, तऽ ओहिसँ जे माटिक जाँच करेलाके बाद फसलक गुणवत्ता पैदावारमे हुनका वृद्धि अवश्य होइत
0: निश्चित रूपसँ।
1: एहि दुआरे माटिक जाँच जे छै किसान भाइ से कृषिके लागत, माटिक जाँच करेलाके बाद ओहिमे कृषिके लागतो कम लगै छै, उपजा बेसी
0: होइ छै,
1: कनि मेहनत कए कऽ जाँच
0: करत, खर्चो कम, मेहनतो कम आ उत्पादन बढ़िआँ। आ एकटा गप सङ्ग सङ्ग आओर जे हम सदैत से जैविक खादके से प्रयोग करबाक चाही। रासायनिक खाद जखने अहाँ उपयोग करबै तऽ अहाँके जमीन जे अइ से ओकर उर्वरा शक्ति समाप्त भऽ जायत। ताहि दुआरे से बेसी जैविक खादके उपयोग करबाक चाही आ तहन अहाँके बेसी दिन धरि अहाँके से ओकर मतलब खेतके उर्वरा शक्ति बनल रहत आ पर्यावरण सेहो संतुलित रहत। तऽ एहन काज किया नहि करब, मानि लिअ अगर उत्पादन करने कमो हैत मुदा पर्यावरण तऽ संतुलित रहत, जे पोषक तत्व हमरा सबके भेटैया शुद्ध भेटत, तऽ एहन काज किया नहि करब। कनिक मने लालच लए लोभ लए जे नहि रासायनिक खाद दऽ देबै तऽ कनि बेसी उपज हैत, लेकिन ओ तऽ हानिकारक हैत ने, खेतोके नुकसान आ शरीरोके नुकसान। ओ जे अन्न खायब की फल की तरकारी ओकरो तक कुप्रभाव पड़त ने स्वास्थ्य पर। तऽ किसान भाइ लोकनिके एकरा ध्यानमे रखबाक चाही आ ओनाहो जोर देल जाइ छै बेसी समय समय पर, अपना सब सेहो कहै छियनि जे जैविक खादके से प्रयोग बेसी सँ बेसी
1: फसल करैसँ पहिने माटिक जाँच।
0: हाँ, निश्चित रूपसँ
1: तखन पता चलत जे ई फसल
0: तहन ओ फसल लगेबाक चाही,
1: फसलमे कोन खाद देबाक चाही, कतेक देबाक चाही,
0: ओकर मात्रा निर्धारित कयल जाइ छै।
1: तऽ कम खाद देबै तऽ ओ खेतमे फसल लऽ लै छै, ओहिसँ पर्यावरण जे छै सेहो संरक्षित रहै छै, प्रदूषित नहि होइ छै। तऽ माटिक जाँच किसान भाइके अवश्य करा लेबाक चाही, किया तऽ माटिक जाँच जे छै कृषि आधार, कृषिके
0: आधार
1: छियै। कहल जाइ छै जे माटिक जाँच जब कराके खेत करबै छी ओकर जे पीएच मान आ उर्वरताके सटीक पता सेहो लागि जाइ छै,
0: निश्चित रूपसँ,
1: जाहिसँ कम लागतमे नीक उपजा।

0: एहन काज किया नहि करब आइ तहन जे हमर किसान भाइ लखन करता ओना तऽ ओ सब अपने बहुत साकांक्ष रहै छथि लेकिन बेर बेर पर हमहुँ सब याद कऽ दै छियनि जे हँ एते रहे जे करब तऽ निश्चित रूपसँ उत्पादन बढ़िआँ हैत तऽ आपकी मिहिर भाइ आप किछु मनोरञ्जन दिस लऽ चलियन अपन किसान भाइ लोकनिके किया तऽ काल्हि जे कि काज करता ओकर योजना तऽ आइए तैयार करता ने आ जन चाहक सङ्ग गीतक आनन्द लेता तऽ आर बढ़िआँसँ योजना तैयार हेतनि तऽ सुनवा दै छियनि अपन किसान भाइ लोकनिके एकटा लोकगीत
1: सुनल जा कुंज बिहारी मिश्र सही गीत।

0: कुञ्ज बिहारी मिश्रके स्वरमे एखन भगवती गीत सुनि रहल छलहुँ हेँ आ आशा करै छी जे भगवती सबके नीक रखथिन प्रसन्न रखैत। मुदा एखन जे देखै छियै ई बेमौसम बरसात जे देखै छी जे भऽ रहल अइ तऽ ओहिमे अपन किसान भाइ लोकनिके से मौसमके जानकारी भेनाइ बहुत आवश्यक छनि, किएक तऽ मौसमके जानकारी रहै छनि तऽ ओहि हिसाबसँ अपन काज कऽ लै छथि। तऽ मौसम की कहि रहल छै से मिहिर भाइ पहिने अहाँ कहि दियौन अपन किसान भाइ लोकनिके।
1: देखियौ लाल बहिन, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभागके सहयोगसँ जारी कयल गेल अछि 30 मई से 3 जून तक मौसमके पूर्वानुमानुसार एहि तरह अछि जे अगला 48 घंटा तक उत्तर बिहारके जिलामे वर्षा होइके सम्भावना बनल अछि। एहिके सङ्ग ओकर मौसमके आमतौरपर शुष्क रहबाक सेहो सम्भावना छै। एहि दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक सेहो सम्भावना अछि। अखन 48 घंटामे वर्षाक जे क्षेत्रमे होयत ओहि क्षेत्रमे 20 से 30 किलो प्रति घंटाके चलबाक सम्भावना हवाके सेहो रहतै। एकर बाद हवाके रफ्तार कम होइके सम्भावना होयत जखन वर्षाके सम्भावना कम भऽ जायत आ अधिकांश क्षेत्रमे 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटाके रफ्तारसँ पूर्वा हवा चलैके सेहो सम्भावना छै। एहि दरमियान सापेक्ष आर्द्रता भोरके 85 से 90% आ दुपहरियामे 35 से 40% रहैके सेहो सम्भावना छै।
0: तऽ ई छल हमर सबके मौसम पूर्वानुमान। तऽ हम किसान भाइ लोकनिसँ कहबनि जे एखन मौसमके देखैत ओहि तरहे काज करैत जे एखन जेना मौसम जेना कहि रहल छै वर्षा होयत आँधी तूफानके सङ्ग होयत अन्हर बिहारि तऽ ओहि समयमे खेतमे नहि रहैत, किया तऽ जहन बुझल रहै छै तऽ लोक साकांक्ष रहैए, पहिने अपन अपन घर पकड़ि लेत। जखने बुझथिन हँ मेघ आबयवला छै आँधी तूफान आबयवला छै पहिने बुझा जाइ छै कने तऽ ओ घरमे घर धऽ लेत, खुजलमे नहि रहैत, किया तऽ ठनका ठनकैके रहै छै, ठनका कतौ खसि सकै छै। तऽ ई अपन माल जालके सेहो सुरक्षा राखैत, ओकरो घरमे बान्हि कऽ राखैत, जहाँ तहाँ चलै लए नहि छोड़ि देथुन आ अपनो सब बाहर नहि निकलतै, सब गोटा साकांक्ष रहैत मौसमके देखैत।
1: लाल बहिन, एकटा आओर भारत सरकार तरफसँ आयल यऽ मौसम पूर्वानुमान। अगला 3 घंटामे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एहि सब स्थान पर गरज के साथ ओलावृष्टि होइके सेहो सम्भावना देलक यऽ।
0: तऽ कहलहुँ ने एखन तऽ जखने मेघ अबैए अन्हर बिहारिके सङ्ग अबैए आ तऽ ठनका ठनकैए, तऽ एहिमे की कहलहुँ तैँ सबगोटा किसान भाइ लोकनि काज तऽ होइते रहै छै लेकिन जान बचा कऽ आ निश्चित रूपसँ बीच दुपहरियामे या जखन मेघ लागल होय
1: बुझाय
0: तऽ घर पकड़ि ली, चाहे नहि अपन घर दूरे हुए तऽ आसे पासके जे कतौ घर होय ओहिमे शरण लऽ ली आ खुजल ठाम खेतमे नहि रही। से किसान भाइ लोकनिसँ हमर सबके आग्रह जे साकांक्ष रहैत। आब देखियौ किसान भाइ लोकनिके किछु मनोरञ्जन तरफ लऽ दैयन, किछु गीत नाद सुनबा दै छियनि, फेर आगू अपना सब गप सप करब। तऽ सुनै छी एकटा आओर लोकगीत सुनू।

0: एखन सुनै छलनि हँ ई पूनम कुमारी कृष्णमे ई नचारी आ खूब नीक लागल हँ हमर श्रोता लोकनिके। देखियौ गीत नाद होइत रहै छै आ एहि सङ्गे जहन काज होइत रहै छै नीकसँ किसान भाइ लोकनिके तऽ आओर मोनमे प्रसन्नता रहै छै। तऽ एखनके समयमे जे छै से अपन माल जाल पर सेहो ध्यान रखबाक चाही। माल जालके एखन एना बरखा होइए तऽ ओकरा खुजल ठाम पर नहि सुरक्षित स्थान पर रखबाक चाही। आ मच्छरके प्रकोप सेहो देखलियै ने बढ़ि गेलै तऽ ओहिसँ बचाव आ फसलमे एखन कोन चीजके पहिन प्राथमिकता हेबाक चाही मिहिर भाई सेहो अपन श्रोता लोकके पहिने कनि कहि दिअ।
1: समसामयिक सुझाव फसलके वास्ते किसान भाइके बुझब जरूरी छै। तऽ समसामयिक सुझावमे किसान भाइके कहल जाइ छै जे प्रमाणित अवधिमे वर्षाके सम्भावनाके ध्यानमे रखैत किसान भाइके कृषि कार्यमे विशेष सतर्कता बरतक चाही। देखियौ मकईके कटाइ दौनी आ ओकर दाना सुखबैके कार्य मौसमके स्थिति देखैत सावधानी से करबाक चाही। आ मूंग जकरा खेरही कहै छै ओ फसल के तैयार जे भ गेल अछि तऽ ओकरा जल्दी से तोड़ि लेबाक चाही
0: सुरक्षित स्थान पर राखि लेबै जे भिजा नहि बाहर मे राखब तऽ मेघ होइए एखन
1: सतर्कता से राखि लेबाक
0: बाद मे जहन मौसम नीक हेत
1: आ खरीफ प्याज के खेती के लेल नर्सरी के तैयारी सेहो कऽ लेबाक
0: चाही उचित बेर रखने।
1: हाँ आ स्वस्थ पौधा के लेल नर्सरी में गोबरक खाद अवश्य डाली जैविक खाद आ छोट छोट उथरगर क्यारी जैके चौराय आ मीट ओकर लंबाई चौराय जे छै से एक रंग रहबाक चाही सुविधा सर अपन एक रंग रखबाक चाही। आ खरीफ प्याज के लेल NH53 एग्री फाउंडर डीक रेट आरका कल्याण भीमा सुपर किस्म ई सब जे छै बीया सब छै से अनुशंसित अछि। आ बीज खसबैके लेल पहिने बीयाके बीजोपचार कऽ के खसेबाक चाही। आ बीजके दर जे छै से 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयरके दरसँ प्याजक बीयाके रखबाक चाही। आ बीज जे छै से प्रमाणित स्रोतसँ खरीदक चाही। ओहिके बाद किसान भाइके धानक बीया जे छै से ओहो बीज स्थली जतय खसबै छै सेहो काज शुरू कऽ लेबाक चाही।
0: खेतक तैयारी जँ खोलने हेता खूब नीकसँ जे किसान भाइ लोकनि हँ जे खेतक तैयारी भऽ गेल हेतनि ओहिमे कम्पोस्ट खाद गोबरक खाद सब दऽ कऽ जे तैयार खूब नीक तऽ ओहिमे ओ बीया खसा सकै ओकर बेर मतलब भऽ गेल अछि।
1: 10 जून तक जे लम्बा अवधि वाला धानक बिचड़ा ओकरा गिरनेक सम्भावना
0: देखियो ओहि लेल तऽ जँ बरखा एखन भऽ गेलै तऽ माटिओ तऽ गील भऽ गेलै।

0: फायदा करत।
1: हाँ हाँ वो लंबा अवैध वाला ले देखियो लंबा अवैध वाला धानक प्रजाति में जना राजश्री राजेंद्र मंसूरी राजेंद्र श्वेता सवर्णा सवर्णा सब एक बीपीटी 5204 एहि तरहक धान सबके नर्सरी के बुआई आप कऽ लेबाक चाही किसान भाई लोकनि।
0: तऽ सबसँ पहिने तऽ किसान भाई लोकनि जिनकर खेत खाली छनि तऽ खेतक तैयार खूब नीकसँ सब गोटाके आब कऽ लेबाक चाही, किया तऽ आब बेर भऽ गेलै आ जहने उपयुक्त बेर बुझाय कि हाँ बीया खसा सकै छी।
1: आ बीया खसबैसँ पहिने खेतके तैयारी जे करबै तऽ कम्पोस्ट
0: नीकसँ मिला कऽ
1: देबाक चाही।
0: नहि नहि पूरा बढ़िआँसँ चला
1: कम्पोस्ट देलाके बाद बढ़िआँसँ ओकर जुताई कए लेबाक चाही
0: आ तहन पानि पड़ि जाइ छै तऽ अहाँके माटि हल्लुक भऽ गेल, बढ़िआँ भऽ गेल, गील भऽ गेल।
1: एहि तरह खरीफ मक्काक बुआईके लेल खेतक तैयारी सेहो करबाक चाही। खेतक जुताईमे 10-15 टन गोबर सरल खाद प्रति हेक्टेयरके दरसँ से व्यवहार करैत किसान भाई लोकनि। बुआई करै समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम सल्फर आ 50 किलोग्राम पोटासक व्यवहार सेहो करैत मक्काके खेती करैक समयमे। उत्तर बिहारके लेल अनुसूचित मक्काके किस्म अछि देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 शक्तिमान 5 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 ईसब यह खरीफ मक्का के बुआई के किस्म। आ अदरक के बुआई के बेर सेहो बढ़िया छै,
0: उचित बेर अदरक के बुआई सेहो कऽ सकै छी।
1: देखियो अदरक कतेक फायदा कनी दिन के बाद ठंडा
0: एखने नहि एखने बरसात आ बरसात आ जाड़ महीना में ओकर कतेक काज होइया तब कलबाक चाही। आ देखियो मिहिर भाई जे किसान भाई लोकन अपन खुट्टा पर पशु रखने छथि पशु पोसने छथि तऽ हुनका सेहो ध्यान रखे किया तऽ आब बरसात जे खसत मानसून आबि जायत तऽ अपन टीकाकरण से अपन मालजाल के एकदम करा लेबाक चाही समय पर। आ गंदा पानि जेना मेघ में तो ओ पानि नहि बरसातक पानि नहि पशु पीबै ई ध्यान रखबाक चाही, नहि तऽ पशु बीमार भऽ जायत। तऽ स्वच्छ पानि साफ पानि पियल देबाक चाही, ओकर नाति के साफ सफाई पर ध्यान रखबाक चाही। जतौ बाहर में जेना एखन कभी कल किया तऽ कखनो के बारिश आबि जाइ छै अन्हर बिहारि आबि जाइ छै तऽ बाहर में पशु के ओ तऽ नीमू धने बाजत ने तऽ नहि छोड़बाक चाही। तऽ एहि सब पर साकांक्ष रहबाक चाही, ओकर घर में साफ सफाई पानि नहि लागै
1: घर के। हाँ हाँ जतब मवेशी अब माल जाल बनै छै ओतऽ थोड़ेक ढरका रहबाक चाही,
0: उठर कनी रहै। हाँ हाँ हाँ
1: जो माल जाल जे गोत गोबर
0: करत तऽ बहि जाय।
1: हाँ हाँ तऽ थाल आब तऽ पानि बराबर पड़ित रहतै आ माल जाल गोबर करत ओतऽ गोत करत ओतऽ जे जमा रहतै पानिओ जमा रहतै
0: मच्छर लागत आ गंदा लागत ओहिसँ 10 बीमारी हेतै ओकरा।
1: कनी थैर के ओकर जतऽ लाइ रहै छै ओतऽ कनी ढलान रहै छै ने तऽ आराम से ओकर
0: आराम से सबटा बहि गेल आ ओकरा प्रतिदिन साफ करबाक प्रतिदिन साफ करबाक चाही। जे भोजन दै छियै जे चारा दै छियै से गलल पचल नहि ई नहि कतेक आइ देलहुँ ओ नहि खेलक तऽ फेर दोबारा दऽ देलहुँ से नहि, जेना अपना सब खाइ छी तहिना ओकरो नीक देबै तहने ने खेतै। हरियर चाराके कनि मिश्रण हेबाक चाही। जे दुधारू पशु पोसै छियै तऽ अन्न दाना देबाक चाही, एहि तरहे जँ ओकरा देबै तऽ अहाँके पशु स्वस्थ रहत। जे दूध देबयवाली पशु अइ से अहाँके नीक दूध देत जकरासँ अहाँ नीक उत्पादन लऽ सकै छी। तऽ एहि तरहे किसान भाई लोकनिके ध्यान रखबाक चाही। आब हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेलै, एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छी। खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई।

खेती गृहस्थी किसान भाई सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग का 5 दिवसीय भारत दौरा, कल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने का दिया निर्देश।

0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों का 15 दिनों में करे निष्पादन। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसलों की क्षति के सर्वे का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग शनिवार से भारत के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति कल विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरोर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में 15 दिनों के भीतर लंबित लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है। यह निर्देश त्रुटि जांच स्तर पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे को लेकर जारी किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि मामूली तकनीकी त्रुटियों के लिए आम लोगों को परेशान न किया जाए और दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले श्री चौधरी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे के बाद आज शाम पटना लौट चुके हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध चलने वाले प्रदेश के सभी विद्यालयों और मदरसों की जाँच कराई जाएगी। फर्जी पाए जाने पर उन विद्यालयों और मदरसों को बंद किया जाएगा।
2: एकदम स्पष्ट नीति बनानी है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्थिति में नहीं होगा और इसीलिए हमने अपने मंत्रालय स्तर पर यह तैयारी की है। हमने इसीलिए मदरसा बोर्ड के से संचालित सभी विद्यालयों की जांच का आदेश दिया है और साथ में संस्कृत विद्यालयों के भी जांच का आदेश दिया है और वो पूरी जांच की जब रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी मंत्रालय स्तर पर उसकी समीक्षा करेंगे और मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ये दोनों बोर्ड से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उनको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जितने फर्जी विद्यालय होंगे उनको पूरी तरह से हटाएंगे।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि यह नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बापू के सिद्धांतों और आदर्शों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बापू की विचारधारा से संगठन को मजबूत बनाया जाएगा।
3: हम लोग नई आधुनिक युग में उस बापू को, विचारधारा को हम गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं और इसमें जब 3 दिन का शिविर चलती

0: है तो पूरी अलग अलग यूनिट आकर के उनको बाजाब्ता किताब से बापू के जो कर्तव्य है चरखा चला करके स्वदेशी आंदोलन को जिस तरह से बापू ने किया यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये सारी बातों पर चर्चा होती है।
1: पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। पटना और आसपास के इलाकों में आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ने से आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। खेतों में लगी फसलों के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 और सारण तथा खगड़िया में 1-1 व्यक्ति के मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने मृतक के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, बांका और भागलपुर जिले में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।
2: दिनांक 30 मई दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज बिजली गिरने की संभावना है। बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल दंडाधिकारी अनिरुद्ध पांडे ने अनुमंडल स्थित गंगा नदी और अन्य नदियों में चलने वाले नाव और मोटर बोट के परिचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले तक यह रोक लगाई गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Pटना पर जा सकते हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बेली ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि तकनीकी ऑडिट के रिपोर्ट पर एक और बेली ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सीमा सड़क संगठन और पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मी लगातार जुटे हुए हैं।
1: विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले, एक सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो दो जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट ने, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आमजनों से कि जून के, मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल।
0: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार जारी सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची के अनुसार पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान, रामा सिंह, पवन जायसवाल और प्रणव कुमार यादव सहित कुल 14 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष

बनाया गया है। वहीं सरोज रंजन पटेल, धनराज शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक तथा राजेश झा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में शेखपुरा जिले की 3 पंचायतों केवटी, महसार और डीहंकु सुंगा के मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 3 जून को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित मुखिया में दीपक कुमार, साधु चौधरी और मथुरा यादव को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जापान में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी शैलेश कुमार और हिमांशु यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम फेज 6 के तहत बिहार दौरे पर आए पंजाब के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने अरदास की और गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति, परंपरा और विरासत को समझने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की सराहना की। दरभंगा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव अब सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी और डुमरा स्टेशन पर भी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को यह जानकारी दी है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि सीतामढ़ी क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय डीटीओ ऑफिस के लिपिक संजय कुमार और उसके सहयोगी दलाल शिवानंद झा को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी आवेदक से गाड़ी ट्रांसफर कराने के एवज में रिश्वत ले रहा था। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना के थानाध्यक्ष अकमल खुर्शीद को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सावित्री कुमारी को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर की गई है। रोहतास की सासाराम नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत 7 सदस्यों का चयन किया गया है। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे का मूल्य 40,00,000 रुपये बताया जा रहा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थ हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के पुलियाघाट के पास गंगा नदी में स्नान के दौरान 2 किशोरी डूब गई। इस घटना में 1 किशोरी की मौत हो गई जबकि दूसरी की तलाश जारी है। वहीं गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया घाट पर गंडक नदी पार करने के दौरान 3 लड़कियां तेज धार में बह गई। घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही है। रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 1 युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति यूमिन आंग हलाइंग का 5 दिवसीय भारत दौरा, कल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने का दिया निर्देश। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों का 15 दिनों में करें निष्पादन। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसलों की क्षति के सर्वे का दिया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
1: मुंगेर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। जिले में तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे सड़क यातायात बाधित हो गया। कई प्रमुख मार्गों पर पेड़ गिरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निर्देश पर बीते दिनों बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार प्रासर मुंगेर पहुंचे। यहां उन्होंने समालय स्थित संवाद कक्ष में मुंगेर और जमालपुर जलापूर्ति योजना को लेकर दोनों नगर निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मुंगेर शहरी क्षेत्र के लगभग 15 वार्डों में जलापूर्ति की समस्या है, वहीं कुछ वार्डों में कम प्रेशर की भी समस्या है। इसको लेकर एक विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है तथा अगले वर्ष गर्मी शुरू होने से पहले योजना को पूर्ण रूप से चालू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के जिन घरों को सीवरेज पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें भी चिन्हित कर सीवरेज पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा।
2: सीवरेज में भी जो छूटे हुए घर हैं, तो उस पर भी उन घरों को जोड़ने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और बहुत शीघ्र जो है सो उसको भी हम लोग जो छूटे हुए घर हैं उसको भी जोड़ने का कार्य किया जाए।
1: जिले में 28 से 25 मई तक संचालित जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले माँ अभियान का समापन हुआ। जिलाधिकारी निखिल नंदन निपिकर ने बताया कि इस अभियान के तहत धारा बरियारपुर हवेली खड़गपुर एवं संग्रामपुर प्रखंडों में कुल 63 कैंप लगाए गए, जिसमें 21 अनुसूचित जनजाति टोलों में पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जन जागरूकता फैलाई गई। इसके साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 625 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 363 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही कर दिया गया। जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीद के 59 दिन बीत जाने के बाद भी लक्ष्य का 30% भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले को इस वर्ष 1880 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक 155 किसानों से 477.265 टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है। जिले के 54 पैक्सों का चयन गेहूं खरीद के लिए किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी मीनू कुमारी ने बताया कि बाजार मूल्य अधिक रहने के कारण गेहूं खरीद प्रभावित हो रही है। इधर जिले के असरगंज प्रखंड में 466 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में यहाँ उत्पादन शुरू कराना है, ताकि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार मिले और पलायन पर रोक लगे। जिला उद्योग केंद्र के निर्देश पर राजस्व एवं अंचल अधिकारियों की टीम ने चिन्हित 466 एकड़ जमीन की मापी नापी और पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया है। मुंगेर

0: के भूअर्जन पदाधिकारी पंकज गुप्ता ने किसानों से अपील की है कि जिनकी जमीन अभी भी पूर्वजों के नाम से दर्ज है वे अविलंब अपने नाम से जमाबंदी करा लें ताकि भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। जिले में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने मुंगेर जिले में पड़ने वाले 26 किलोमीटर लंबे संपूर्ण कांवरिया पथ का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे कांवरिया पथ में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों का जायजा लिया।
1: जो मुंगेर जिले में कांवर पथ है, आने वाले श्रावणी मेला के चलते हम लोगों ने इसका निरीक्षण आज किया। सभी जिले के वरीय पदाधिकारी और लाइन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे यहाँ पे। 26 किलोमीटर जो कमराई से कुमरसार हम लोगों का है, उसके बीच में जो हमारे धर्मशाला है बीसीडी के द्वारा जो मेंटेन करना है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और संबंधित निर्देश भी किया है कि उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो पीएचडी की व्यवस्था होती है उसको भी हम लोगों ने मुआयना किया उसका, और पीएचडी विभाग को कहा गया कि इस बार अधिक से अधिक शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए। एसडीओ साहब के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, और उसमें भी हम लोगों ने एसडीओ साहब को जो डायरेक्शन थे और जो लोकल स्थानीय मुद्दे थे उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देने के लिए कहा है। और इस बार की व्यवस्था हम लोग समय के काफी पूर्व हम लोग कम्प्लीट करा लेंगे और किसी श्रद्धालु को कोई तरह की दिक्कत नहीं।
0: मुंगेर जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक आस्था उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।

आप सुन रहे थे पतंग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है, संगीत रवि का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है आज और कल।

राजा जानी इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ये गाना था फिल्म राजा जानी का, गाया था इसे लता मंगेशकर ने। अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में फिल्म आस का पंछी का ये गाना। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

और अब सुनिए इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ नगमा। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी और मौसिकार शंकर जयकिशन। फ़िल्म का नाम है पगला कहीं का।

आप सुन रहे थे ये गाना मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, फिल्म थी पगला कहीं का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। समय हो चला है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का, तो आइए सुनिए ये कार्यक्रम सिंगरहार।

आजुक अंकक संग उपस्थित भ गेल छी हम सोनू अहाँक रेडियो सेटक संग संग न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम सँ अहाँ अपन मोबाइल सेट पर सेहो सुनि सकैत छी। एहिठाम हम अपने लोकनि सँ मैथिली साहित्यक गपसप करैत छी तँ सामाजिक सरोकार सँ जुड़ल सेहो गप करैत छी। हाँ, अपन साहित्य प्रणेताक सम्बन्धमे सेहो किछु गपसप कऽ लैत छी तँ कहियो कोनो पुस्तक पर सेहो विचार विमर्श करैत छी। ततबे नहि, अपन जे भाषा अछि ताहिमे जे प्रयुक्त होइत शब्द सब अछि ओकरा विषयमे सेहो किछु गपसप करैत छी, मने शब्द विमर्श करैत छी। तँ आइ एहि कार्यक्रममे हम अपन एक गोट ओहन साहित्यकारक विषयमे गप करब जिनक मैथिली साहित्यमे मुरली बाजि उठलनि आ तकर सुमधुर कर्णपुरीय ध्वनि मैथिली साहित्य जगतमे गुंजित होइत रहल। बंधु, हम गप कऽ रहल छी उपेन्द्र ठाकुर मोहनक, जखन स्वयं

सेहो गप करै छी। हाँ, अपन साहित्य प्रणेताक संबंध में सेहो किछु गपसप कऽ लैत छी। तऽ कहियो कोनो पुस्तक पर सेहो विचार विमर्श करैत छी। ततबे नहि, अपन जे भाषा अछि ताहिमे जे प्रयुक्त होइत शब्द सब अछि ओकरा विषयमे सेहो किछु गपसप करैत छी, मने शब्द विमर्श करैत छी। तऽ आइ एहि कार्यक्रममे हम अपन एक गोट ओहन साहित्यकारक विषयमे गप करब जिनक मैथिली साहित्यमे मुरली बाजि उठलनि आ तकर सुमधुर कर्णपुरीय ध्वनि मैथिली साहित्य जगतमे गुंजित होइत रहल। बंधु, हम गप कऽ रहल छी उपेंद्र ठाकुर मोहनक। जखन स्वयं मोहनक मुरली बाजत तँ ओकर तानसँ के वंचित रहि सकैत अछि। उपेंद्र ठाकुर मोहन गीतक रचना सेहो करैत छलाह आ हिनक गीत सब हृदयग्राही होइत छल। इएह कारण छल जे हिनक गीत सब बेस चर्चित रहल। ओना तँ वृत्तिसँ ई पत्रकार छलाह। आर्यावर्त अखबारक आरम्भहि कालसँ ओकर संशोधन विभागमे कार्यरत रहलाह। पुनः 1960 ईस्वीमे जखन मिथिला मिहिरक पुनर्प्रकाशन आरम्भ भेल तँ पहिने ई ओकर उपसम्पादक भेलाह आ पछाइत ओकर सहायक सम्पादक रूपमे कार्य करैत रहलाह। किन्तु हुनक हृदयमे साहित्यक असीम सम्भावना संचित छलनि जे छंद बनिकऽ निरंतर प्रवाहित होइत रहल आ तकर रसास्वादन साहित्य पाठक किम्बा सामान्य श्रोता सेहो करैत रहल। आ हमरा ई बुझल अछि जे हमर जे श्रोता तिनका लेल कखन की सुनेबाक अछि से हमरा बुझल रहैत अछि। आउ ने पहिने एकटा कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद लैत छी आ तकरा बाद उपेंद्र ठाकुर मोहनक विषयमे आर किछु गपसप करब।

एखन हमसब मैथिली गीतक आनंद लऽ रहल छलहुँ हैं। बंधु गप कऽ रहल छलहुँ हैं हमसब उपेंद्र ठाकुर मोहनक विषयमे। उपेंद्र ठाकुर मोहनक जन्म दरभंगा जिलाक चतरिया गाममे 24 नवंबर 1916 ईस्वी कऽ होइत छनि आ 24 मई 1980 ईस्वी कऽ हुनक देहांत भऽ जाइत छनि। उपेंद्र ठाकुर मुख्य रूपसँ पद्य रचना कयलनि। मैथिलीमे हिनक 3 गोट काव्य संग्रह प्रकाशित अछि, जाहिमे पहिल छनि फुलडाली, जे मैथिली श्रृंगारिक गीतक लघु पुस्तिका जकाँ अछि, आ दोसर पुस्तक 1977 ईस्वीमे प्रकाशित होइत छनि, जाहिमे 101 टा कविता संकलित अछि आ ओकर नाम अछि बाजि उठल मुरली। बाजि उठल मुरली लेल हिनका वर्ष 1978 ईस्वीक साहित्य अकादमिक सम्मानसँ सम्मानित सेहो कयल गेल छनि। ततबे नहि, एहि पुस्तकक महत्व एकर भूमिका लऽ कऽ सेहो अछि। एकर भूमिका 44 पृष्ठमे लिखल गेल अछि। हिनक तेसर कविता संग्रह इतिश्री नामसँ अछि, जे हिनक मृत्युक पश्चात 1982 ईस्वीमे प्रकाशित भेल। ततबे नहि, मैथिलीक अतिरिक्त ई संस्कृतमे सेहो काव्य रचना सब कयलनि। तकर प्रमाण अछि जे उग्रवंश प्रशस्ति नामक संस्कृतमे एकटा प्रशस्ति काव्य प्रकाशित छनि। हिनक जे कविता संग्रह बाजि उठल मुरली अछि, ताहिमे 101 कविता संकलन कयल गेल अछि, जे तत्कालीन कोनो कविक एक संग एतेक कविता संग्रह पहिल संकलन छल। दोसर, पहिने कहलहुँ जे एकर महत्व एकर भूमिका लऽ कऽ सेहो अछि, जे मोहनक सुदीर्घ काव्यधाराक विभिन्न पक्षक, विभिन्न अवधिक, विभिन्न विचारधाराक, विभिन्न अनुभूतिक ज्ञान करेबाक लेल ई संकलन पर्याप्त सामग्री सब दैत अछि। एकर अतिरिक्त एकर भूमिका शास्त्रीय कविताक प्रमाणिक मार्गदर्शन करबैत अछि। ततबे नहि, केवल शास्त्रीय कविताक विषय नहि अछि, अपितु तथाकथित विभिन्न वादयुक्त नव कविताक विषयमे सेहो कवि अपन दृढ़ वक्तव्य देलनि अछि। भूमिकाक रूपमे कवि आ कविता, दशा आ दिशा शीर्षकसँ हिनक मान्यता व्यक्त होबय लागल अछि, से आगाँ जा कऽ विभिन्न उपशीर्षक सबमे बटैत गेल अछि आ ओहिमे विस्तार पबैत गेल। हिनक जे बाजि उठल मुरली अछि, से राधा कृष्णसँ संबंधित विरह काव्यक मार्मिक वर्णन जकाँ एहिमे भेल अछि। एक दिस हिनक गीतमे राधा कृष्णसँ संबंधित विरह व्यथा अछि,

0: तऽ दोसर दिस दार्शनिक रा समूलक कविता सेहो अछि। एक दिस जँ अभियान गीत कवि भेटैत छथि तऽ दोसर दिस ऋतु वर्णन सेहो देखबामे अबैत अछि। विभिन्न छन्दमे हिनक कविता सब देखबा लेल भेटैत अछि। हमरा लोकनि आर किछु गपसप करब, मुदा किया नहि ताहिसँ पहिने एकटा काव्य पाठक आनंद लेल जाय।
1: पहिल कविताक शीर्षक थिक दुनियामे। बरतिक्रम आपेच पाँच छै दुनियामे, सभठा झूठे आय साँच छै दुनियामे। बरतिक्रम आपेच पाँच छै दुनियामे, सभठा झूठे आय साँच छै दुनियामे। सिमसल जारनि सौंकी भानस भात हेतै, सिमसल जारनि सौंकी भानस भात।

पझैल आँच छै दुनिया में, देखबा में तो सुपक सिनुरिया सन लागे।

देग देग आ शब्द शब्द पर छई आकुश, देग देग आ शब्द शब्द पर छई आकुश, प्रतिपल प्रतिशोधिक जांच छई दुनिया में, प्रतिपल प्रतिशोधिक जांच छई दुनिया में, ओकरा लेल पहाड़ बनल छई जिंदगी, ओकरा लेल पहाड़ बनल छई ई जिंदगी, जकरा हिए नहि छौ पाँच छई दुनिया में, जकरा हिए नहि छौ पाँच छई दुनिया में, सोझा में सोझमतिया

देखू परखू केहन नाच छै दुनिया में, बरतिक रम आ पेच पाँच छै दुनिया में, धुआं संग पझैल आँच छै दुनिया में, भीतर अम्मत कोत कांच छै दुनिया में। दोसर कविता के शीर्षक थिक परिचिति। एक जोड़ चिड़ै उड़ जाइत अछि आकाश देश, एक जोड़ चिड़ै उड़ जाइत अछि आकाश देश, मस्ती में गबैत जौ

भावनक गीत संगीत छोड़ सब हित मीत, पाँखि में पुरजोर शक्ति भरि छुबि लैछ गगन आनंदे मगन। एक जोड़ चिड़ै उड़ि जाइत अछि आकाश दिस मस्ती में गबैत यौवनक गीत संगीत, छोड़ि सब हित मीत, पाँखि में पुरजोर शक्ति भरि छुबि लैछ गगन आनंदे मगन। मुदा आब भऽ गेल छैक सब बाट बन्न, मुदा आब भऽ गेल छैक सब बाट बन्न, जायत तो जायत कतौ, सब सीमा तो कऽ लेलक पार, हाय रे कपार। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, मुदा आब भऽ गेल छैक सब बाट बन्न, जायत तो जायत कतौ, सब सीमा तो कऽ लेलक पार, हाय रे कपार। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय, खसि पड़ैत छनि बापक माथक पाग बेटा बेटीक नव उड़ानसँ। माइक चोराओल कोसलैता सधिते समाप्त भऽ गेलै इलबाइस, एम्हर झमा कऽ खसैत छथि माय, खसि पड़ैत छनि बापक माथक पाग बेटा बेटीक नव उड़ानसँ। मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा, मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा, ओ पार केने छथि 50 वसंत, अनुभवक पेटार छथि तीत मीठक, ई तँ प्रवेश कयलक अछि बैसेमे। मायके बूझल छनि संतानक उड़ानक सीमा, ओ पार केने छथि 50 वसंत, अनुभवक पेटार छथि तीत मीठक, ई तँ प्रवेश कयलक अछि बैसेमे। देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, विचलित भऽ जाइत अछि बाटसँ। सशक्तिकरणक ई सोपान नहि जे ओंघराक खसि पड़ी, तोड़ि दी नवताक नाम पर ठाढ़ कयल सब सभ्यताक अट्टालिकाकेँ। देखाउँसमे लोक बिसरि जाइत अछि अपन अस्तित्व, विचलित भऽ जाइत अछि बाटसँ। सशक्तिकरणक ई सोपान नहि जे ओंघराक खसि पड़ी, तोड़ि दी नवताक नाम पर ठाढ़ कयल सब सभ्यताक अट्टालिकाकेँ। भूमण्डलीकरणक एहि युगमे, भूमण्डलीकरणक एहि युगमे कतबो घोर भट्ठा भऽ जाओ संस्कार आ संस्कृति, भूमण्डलीकरणक एहि युगमे कतबो घोर मट्ठा भऽ जाओ संस्कार आ संस्कृति, मुदा पेरिस आ पटना किन्नहु नहि भऽ सकै छै कखनो एक, मुदा पेरिस आ पटना किन्नहु नहि भऽ सकै छै कखनो एक, कारण दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै, दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै, दुनूक अपन फराक फराक परिचिति छै। अन्तमे पुनः एकटा गीत, आइ काल्हि इज्जति हवामे उड़ी आइ छै, दोबरकेँ कीनि रहल जकरा लग पाइ छै, आइ काल्हि इज्जति घर

में काटी मारी, अपने में काटी मारी, निखातर में जाई छई, दो भर के की निरहल जकरा लग पाई

लोक आब अन्न छोरी, लोक आब अन्न छोरी लोके के खाई छै दूबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छै, दूबर के कीनी रहल जकरा लग पाई छै। सूप महक भट्टा

0: इछई दोबर कैकी निरहल जकरा लग पाई छै आई काली जत हवा में उड़ियाई छै दोबर कैकी निरहल जकरा लग पाई छै दोबर कैकी निरहल जकरा लग पाई छै दोबर कैकी निरहल जकरे लग पाई छै।
1: एखन हमसब काव्य पाठक आनंद लऽ रहल छलहुँ हैं आ देखू जे आब कार्यक्रम में समय भऽ गेल अछि। शब्द विमर्शक आओ किछु शब्द पर सेहो हमरा लोकनि गपशप कऽ ली। एकटा शब्द अछि रह रहा। रह रहा मने होइत अछि जखन तखन हरदम। तहिना दोसर शब्द अछि पथार। पथार कहल जाइत अछि कोनो अन्न के सुखेबाक लेल जे पसारल जाइत अछि जमीन पर तकरा पथार कहल जाइत अछि। तहिना एकटा आर शब्द अछि चाल पारब। चाल पारब मने होइत अछि ककरो जोर सँ बजायब शोर पारब। आ ओहिसँ एकटा आर शब्द अछि हाक देव। हाक देव मने होइत अछि ककरो जोर जोर सँ बजायब। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। देखू जे आब घड़ी सारा कऽ रहल अछि कार्यक्रमसँ विदा लेबाक लेल। किएक ने चलबासँ पहिने एकटा आर कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद लैत चली।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं, कुछ एक क्षणों में समाचार होंगे।

मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री

0: टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। 6ठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली

0: परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final.

0: बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर टू का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह

0: मलिक ताउन काउंसिल जीसीसी ममालिक इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने अबनाए हुरमुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान में अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज़म मैकेनिज्म के क़याम पर काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नज़र से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमतनामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकल मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पीटीएम कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। IPL क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ्फुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और IPL क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रानू सिंह। श्रोताओं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की विशेषता बताते हुए कहा है, मनुष्य के मरने पर उसका साहित्य ही जीवित रहता है। इस एक पंक्ति में हजारी जी ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी संवेदनाओं को ही उसका सर्वस्व बताया है। मनुष्य का शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है तो बस जीवन के हर पल हर विचार जीवित रह जाते हैं। मिट्टी में मिल जाने के बाद आपकी कहानियां आपके विचारों को ही तो याद किया जाता है और यही तो साहित्य का निर्माण करती हैं। इसलिए साहित्य का आनंद लीजिए और अपने विचारों से अपने साहित्य को जीवित रखने के प्रयास में जुट जाइए। इन साहित्यिक बातों के साथ अब प्रारंभ करते हैं आज की साहित्यिक यात्रा संपादकीय के साथ। आज के संपादकीय में हम बात करेंगे एक निबंधकार की, उनके द्वारा लिखित उन निबंधों की जिन्हें मात्र पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है मानो सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा हो। शब्द इतने सरल जैसे आम जन का हृदय हो, ना कोई छल ना कोई दिखावा, बस उतना ही जिसे जिया जा सके। वैसे ये मात्र एक निबंधकार नहीं अपितु पत्रकार और साहित्यकार भी हैं, परंतु आज हम उनके निबंधकार रूप को ही जानेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे। नाम है उनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विद्यालय की शिक्षा से लेकर कॉलेज के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं तक हमें निबंध लिखना पड़ता है। निबंध लेखन इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम किसी एक विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकें। हम अपने मस्तिष्क का वैचारिक मंथन

0: कर सकें, शब्दों को वाक्यों में सजाकर सुंदर रूप दे सकें। मन मस्तिष्क में विचार तो बहुत आते हैं, परंतु समय पे जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम बोल नहीं पाते। कारण, हम उन विचारों को समेट ही नहीं पा रहे होते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में पनपते हैं। यदि हम निबंध लिखना प्रारंभ करें तो हमारे विचार परिपक्व होने लगेंगे। तार्किकता से हम बहस नहीं, सही बात रखना सीखने लगेंगे। शब्द भंडार बढ़ने लगेगा, व्याकरण शुद्ध होने लगेगा, बोलने की कला प्रभावी बन जाएगी। अतः निबंध लिखना पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त निबंधकार हैं। उनके निबंधों की विशेषता रही है कि वे आम बोलचाल वाले शब्दों को अपने निबंध में स्थान देते हैं। निबंध अपने अनुभवों को साझा करते हुए लिखे गए हैं, जिसे पाठक भी जीने लगते हैं। कठिन विषयों को भी इतनी सरलता से लिखा है जिसे आम जन भी समझ अपने ज्ञान चक्षु खोल पाता है। उनके निबंध संग्रह में बूढ़ी काकी का विशेष स्थान है। यह गरीबी में भी स्वाभिमान के साथ जीना नहीं छोड़ती। इसे आत्मीयता से पढ़ने पर गला रुंध जाता है। उनकी जिंदगी लहराई रोते हुए व्यक्ति को हंसना सिखाती है और हारे हुए को उठना सिखा देती है। माटी हो गई सोना मेहनत की महिमा को दर्शाती है। तो उनके द्वारा रचित आदमी की पहचान इंसान के कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, यह बताती है। दीप जले शंख बजे उनकी संस्मरणात्मक निबंध है। बाजे पायलिया के घुंघरू समाज पर व्यंग्यात्मक रूप से प्रहार करती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने निबंधों से इसकी विशेषता का परिचय कराया है। निबंध कोई भाषण या विवरण नहीं है, इसमें भी भावना है, व्यंग्य है और समाज को सही दिशा दिखाने की ताकत भी। श्रोताओं, संपादकीय के बाद अब समय हो चुका है जरा सोचिएगा। आज हम एक विशेष बात पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, कभी ऐसे सपने जिनके पूरे होने की उम्मीद तक नहीं होती, पर फिर भी हम उन्हें देखते हैं और कभी कभी उन्हें पूरे करने के प्रयास में भी जुट जाते हैं। लेकिन समय बीतता है और हम बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उन सपनों को भविष्य में होने वाले फायदे से जोड़कर उसे या तो बाद के लिए छोड़ देते हैं या फिर जीवन से हटा ही देते हैं। परंतु मनुष्य बिना सपनों के जीवित रह ही नहीं सकता। सपने आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। सपने हारे मन को फिर से जगाते हैं। सपने कुछ नया करने की राह दिखाते हैं। सपने दुखी मन को प्रसन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सपने अवश्य देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कभी मत छोड़िए। जरा सोचिए के बाद आइए अब सुनते हैं बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय उषा किरण खान से उनकी कहानी।
1: अन्नपूर्णा और विनय जी ने मिडिल स्कूल से साथी विदाई ली। अन्नपूर्णा रामदेव कन्या मध्य विद्यालय की प्रधानाचार्य और विनय जी सारंग मध्य विद्यालय के गणित शिक्षक दोनों खुशी खुशी विदा होकर अपने छोटे से दो कमरों वाले घर में लौट गए। घर के आगे पीछे बहुत ही छोटा खुला स्थान था, जहाँ कुछ फूल पौधे लगे थे जो समय अभाव के कारण खाद पानी को तरसते रहते। आते ही विनय जी ने एक प्यार भरी नज़र बगीचे पर डाली, सोचा अब सबसे पहला काम इन्हें ही संवारना है। हम अब इत्मीनान से जगा करेंगे, बागवानी करेंगे, किताबें पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा मुस्कुराई। आपके मुफ्ती छात्रों का क्या होगा, वे आते रहेंगे। विनय बाबू ने अपने बेटे की तरह अनेक जरूरतमंद छात्रों छात्राओं को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया, पर वर्ष में दो चार से अधिक नहीं वो लेते। उनके पढ़ाए छात्र सदा सफल रहते, यह भी नहीं था कि वे परीक्षण करके छात्र लेते, पहले आओ पहले पाओ का टेक था। जैसे इनका बेटा IIT उत्तीर्ण प्रबंधन में महारत प्राप्त कर बड़ा अधिकारी बना, वैसे ही अन्य छात्र भी बैंक से लेकर इंजीनियरिंग डॉक्टरी तक में प्रवेश पा गए। आज के जमाने में ये अजब दंपति हैं। अन्नपूर्णा जी प्रिंसिपल रहती हुई अनेक विकासात्मक कार्य करती हुई अकिंचन रही। दूसरे लोगों की तरह पुस्तक, खेल सामग्री, इमारत निर्माण, फर्नीचर वगैरह खरीद में कभी हिस्सा न लिया। गणित के शिक्षक कोचिंग कर लाखों कबारा न्यारा करते, सो भी न किया, मुफ्त में पढ़ाते रहे। बेटी को पढ़ाकर विवाह करने और बेटे को ऊंची पढ़ाई कराने में सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह खाली हो गए। दोनों मनोयोग से अपने पुराने घर को संवारने में लग गए थे। फूल घास पेड़ लगाते, विनय बाबू घर के

पर्दे सिलती बदलती साग सब्जी उगाती अन्नपूर्णा। आजू बाजू की सहेलियों के लिए भी वक्त था। वर्ष भर सब ठीक रहता, बरसात में घर चूने लगता कई कोनों से। दोनों को जो अत्यल्प रिटायरमेंट का लाभ मिला उससे छत की मरम्मत कराकर सुकून तो हो गया, बाहर भीतर दीवारों पर साधारण चूना करवा पाए जिससे फील गुड तो हुआ। दिन सुख से गुजर रहे थे। स्कूल के पुराने साथी जब आते तो तरह तरह के उपाय सुझाते। यार विनय, पुराना पलस्तर झाड़ कर नया करवा लो। अन्नपूर्णा जी, आपका बेटा और बहू इतनी बड़ी नौकरी में है, उन्हें कैसा लगता होगा यहाँ आकर? कोई कहती, कब तक भाई साहब स्कूटर घसीटते रहेंगे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? बेटा इतना बड़ा आदमी हो गया, नया फ्रिज तो ले ही लीजिए, किचन ठीक कर लीजिए। ये सब लोग कहते रहते। आगे पीछे का गलियारा 2.5 कट्ठे का मकान इस्तेमाल कर 2.75 कट्ठे का हो गया था। पड़ोसी मित्र ने शाइस्तगी से समझाया कि हम दोनों क्यों ना मकान बिल्डर को दे दें, कुछ आमदनी भी हो जाएगी। विनय बाबू को धक से लगा, यह ठीक रहेगा, जमीन चली जाएगी, आकाश में क्यों टंगे रहें? आम फल रहा है, फूल पत्ती शोभा बढ़ा रहा है, जामुन है, मोह लगा था, पर देख रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अगोरना तो कठिन हो गया। सोचता हूँ, कहकर विनय जी चुप हो गए। क्या सोचा विनय बाबू? बार बार उनके मित्र आते और उनसे कहते, आप अच्छे विक्रेता हो सकते हैं, ऑडिटर थे आप, खरीद बिक्री मगर खूब समझते हैं। अरे मास्टर जी, सरकार में जो रहता है यही तो सीखता है। वे हंसने लगे। विनय बाबू ने अन्नपूर्णा जी से सारी बात बताई। अन्नपूर्णा जी पहले से जानती थी, उन्हें भी मोहल्ले की औरतों ने कहा ही था। नहीं, उन्होंने कहा, ऐसा विचार चलता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या लेना है नहीं लेना है ये तो आपके अपनी आर्थिक लाभ की बात है। तुम यही सोच रही हो? हाँ, मुझे तो अपना ही घर प्यारा लगता है। ठीक है, मैं अकेला क्यों सोचूं, तुम भी जब सोच लेना तो बताना, विनय जी ने कहा था। तब तक संजीव और बहू का फोन आ गया था। बहू ने कहा, अम्मा जी आपके लिए ही घर खरीदा है, रीता दी और जीजा जी को भी बुलाया है। तुरंत बेटी रीता का फोन आया, उसका बोलते बोलते गला भर आया, आज मेरा भाई संजीव बंगलोर में घर खरीद रहा है। अम्मा, सब तुम्हारे सब्र का फल है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं। अम्मा, आप भले काले धागों का माला पहनती रहीं, कान कलाई सब में कांच और मोती पहनती रहीं, सारा गहना बेचकर संजीव को लायक बनाया, अब समय आया है, वह तो करेगा आपके लिए। बेटी के उछाह को लगाम लगाने की गरज से बात बदल दी थी। अन्नपूर्णा जी के लिए पीली दक्षिणी कांजीवरम की साड़ी बहू ने खरीदी थी, चूड़ियां खुद देकर आई थी सासू माँ, गले में, बांह में, कलाई पर और कान में हीरे और सोने के गहनों से उन्हें लाद दिया था, क्योंकि बहू के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट माता पिता तथा संगी साथी आए थे। एहतियातन नंदा ने अन्नपूर्णा को नया सोने का कड़ा और हार पहना ही दिया था। बहू से इन्होंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, अम्मा आप हमारी अम्मा है, ऐसे ही रहना है आपको। अब अम्मा सख चाहती रही, गृह प्रवेश की विधियां पूरी की, बेटी अपलक माँ को देख रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वह अपना नेक न्यौछावर लेकर लौट गई। एक हफ्ते बाद विनय बाबू ने बेटे से लौटने की चर्चा की। नहीं पापा, ये 4 कमरे का घर आप लोगों के लिए ही तो लिया है, कहाँ जाइएगा? हाँ घर तो है, पर जरा घर से हम सोच विचार के आए तो आप घर वहाँ का बेच लीजिए ना, हमारा भी कर्जा चुकाने में आसान हो जाएगा। विनय बाबू का कलेजा धक से रह गया। तो ठीक है, उसके लिए भी जाना होगा ना, यह कह के वो दोनों घर चले आए। एक दिन बरामदे से उतर रहे थे कि पैर उल्टा पड़ गया, मुड़ जाने से गिर गए, उठने में तकलीफ हो रही थी। जल्दी ही दो पढ़ने वाले बच्चे आ गए। आंटी जी आइए, एक चिल्लाया, पैर मुड़ गया है, उठ नहीं पा रहा हूँ, सहारा दे दो। दोनों छात्र सहारा देकर उठा रहे थे कि अन्नपूर्णा आ गई। स्थिर स्वभाव की अन्नपूर्णा भी घबरा गई। तीनों ने उठाकर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। अन्नपूर्णा जी ने लगाने वाली दवा लगाई, लेकिन उसी वक्त पड़ोसी आए और उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे करने को कहा और एक्सरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर निकल गया। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा ही दिया। सर, संजीव को खबर कर दिया जाए क्या? उन्हीं का छात्र डॉक्टर था जिसने कहा। क्यों, तुम हो ना, उसे इतनी छोटी बात के लिए क्यों कहोगे? मैं तो हूँ, पर वो बुरा ना माने, उसका मोबाइल नंबर दें। डॉक्टर सुभाष ने पूरा इलाज अपने जिम्मे कर दिया।

0: विनय जी को कभी पता नहीं चला कि डॉक्टर से संजीव की कोई बात हुई थी। एक दिन बेटी रीता किसी स्कूल में प्रैक्टिकल की एक्सटर्नल बनकर आई थी। घर आना स्वाभाविक था। पापा को प्लास्टर चढ़ा देखकर रोने लगी। आप लोगों से रोज बात होती है अम्मा, कहा क्यों नहीं, ऐसा क्या हुआ रीता, तुम कमजोर तो नहीं थी इतनी, पापा ने हंसकर कहा। माँ भी मुस्कुराती रही, मैं अब जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा घर है, स्कूल है, स्कूल मेरे बिना चलेगा और घर भी। 4-6 दिन रीता रह गई। माँ पापा ने समझा बुझाकर विदा किया। रीता हर महीने आने का कहकर रुखसत हुई। लगभग 1 माह बाद बेटे का फोन आया। पापा कैसे हैं, प्लास्टर कटा, अच्छा तो रीता ने तुमसे बता दिया, कोई खास बात थी नहीं, हंसकर बोले विनय जी। नहीं पापा, सुभाष भैया ने बताया था। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया, विनय बाबू की सारी चहक चुप हो गई। इसे पता था पहले दिन से और यह हालचाल आज ले रहा है, सुभाष ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। बेटे ने आने में असमर्थता जताई थी, उसका बड़ा कॉन्फ्रेंस बंगलोर में होने वाला था जिसका प्रबंध देखना था। चुपचाप सुनते रहे विनय जी। अगला हफ्ता प्लास्टर कटने, फिजियोथेरेपी करने में बीता। छड़ी लेकर फ्लैट में टहलने लगे विनय जी। सब कुछ पहले जैसा था, परंतु नीचे जाकर बागवानी का शौक खत्म सा हो गया था। बरामदे में बैठे तख्त पर वैसे ही बैठे रहते थे, कुर्सियां लगी थीं। विनय जी टहल घूम कर आए ही थे, बगीचे की जामुन की फुनगी विदा लेते सूर्य की आभा से अरुण हरित दिख रही थी। तभी पड़ोसी मित्रगण आए, कुशल छेम पूछा। तख्त पर बैठकर पहली बार हरे को सुनहरा फिर लाल होते देख रहा हूँ भाई, विनय जी ने कहा। शीर्ष की ओर देखो। पहली बार क्यों, सदा धरती की ओर देखता रहा, वृक्ष की जड़ें देखी, फुनगी की शोभा कहाँ देखी। बड़ी शहरी बात कर रहे हैं, गहरी भी है, इससे लगता है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। बिल्कुल, सोचने का अच्छा वक्त मिल गया होगा। बिल्डर मात्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, नक्शा बनाकर बैठा है। हम लोगों को तब तक के लिए शिफ्ट करने के लिए एक फ्लैट भी खाली रखे हुए है। अब तो निर्णय ले लीजिए, मित्र ने कहा। मैं भी अपनी जमीन दूंगा मित्र, कल सुबह कागजात सौंप दूंगा, एग्रीमेंट लेकर बिल्डर को आने कह दीजिएगा, विनय जी ने कहा। मन पर से बोझ हट गया। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था। बेटी स्कूल जाने लगी थी, बेटा गोद में था। अन्नपूर्णा जी की कमाई से घर चलता, विनय जी की सारी कमाई बैंक लोन में कट जाती। घर अपना हो गया था, जहाँ जामुन और आम अमरूद के पेड़ लगे थे, ओढ़हुल कनेर और हर सिंगार थे, संध्या बेली चमेली भी है। छोटे से आंगन और बगीचे वाला यह था अब बहुमंजिली इमारत का हिस्सा होगा, जहाँ गमलों में बोनसाई उगाए जाएंगे। परंतु यह रात विनय जी को गहरे सुकून की निःस्वप्न गहरी निद्रा दे गई।
1: यह कहानी अंदर से झकझोर देती है। जिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में माता पिता अपना सब कुछ त्याग देते हैं, जब वे बच्चे अपने स्वार्थ में उनके दिए संस्कारों को तिलांजलि दे देते हैं, तो अत्यंत दुख होता है। कुछ ऐसे ही भावों को व्यक्त करती ये कहानी अभी हम सुन रहे थे स्वर्गीय उषा किरण खान से। इस कहानी के बाद आइए अब सुनते हैं अभिलाषा कुमारी से उनकी कुछ कविताएं।
2: नमस्कार, अपने परिचय से प्रारंभ करती हूँ। नित नई नवेली आशा हूँ, मन की मैं ही अभिलाषा हूँ। नित नई नवेली आशा हूँ, मन की मैं ही अभिलाषा हूँ। हे काव्य प्रेमियों, याद रहे मैं कविता की परिभाषा हूँ। और आप सभी के समक्ष 2 नवगीत लेकर आई हूँ। पहले नवगीत का शीर्षक है करो न परिवर्तन की बात।

और अंतिम बंध में देखिए, इतना भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की बात तो करनी ही है। गति धीमी है हम लेकिन विचलित नतनिक होने वाले, गति धीमी है हम लेकिन विचलित नतनिक होने वाले, मिलकर लाएंगे परिवर्तन।

और प्रस्तुत करने जा रही हूँ दूसरा नवगीत। शीर्षक है न बोलूंगी मैं अब तुमसे, श्रृंगार रस का आनंद लीजिए। चलो जाओ जी सांवरिया, न बोलूंगी मैं अब तुमसे,

0: सांवरिया न बोलूंगी मैं अब तुमसे। धन्यवाद।
1: मधुर स्वर के साथ अभिलाषा कुमारी अपनी कविताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही थी। इन कविताओं के बाद अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, तो अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग रानू सिंह का और प्रस्तुति थी आकाशवाणी पटना की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.5।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: हजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दरभंगा से पेश है फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।

कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है। ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। नमस्कार श्रोताओं, मैं सज्जाद अहमद खान आपकी सेवा में। इस कार्यक्रम को लेकर जो आपका कार्यक्रम है,

0: और आप ही के लिए है फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम और नंबर आपको बता रहे हैं जिस पे आपको कॉल करना है, और अब से 11 बजे तक जारी रहने वाले इस कार्यक्रम में अपनी शमूलियत करनी है, अपनी सहभागिता दर्शानी है, तो देर ना करें, हमारा नंबर नोट करें 9430029353 अर्थात 9430029353 पर आप हमें करें कॉल और जीवंत कार्यक्रम में, इससे लाइव कार्यक्रम में शामिल हों, अपनी फरमाइश बताएं, सुने अपनी पसंद के फिल्मी गाने। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहता है और आज भी है। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी है दूर सहर थोड़ी दूर साथ चलो।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: और सचमुच हम समझते हैं कि अभी सब लोग जाग रहे हैं, चूँकि चिराग तब तक जागते हैं जब तक हम जागते हैं, तो अभी चिराग जाग रहे हैं तो आप भी जाग रहे हैं, और सवेरा अभी काफ़ी दूर है, अभी है दूर सहर, सवेरा अभी काफ़ी दूर है तो थोड़ी दूर साथ तो चल ही सकते हैं हम। कॉल करें आप, हमने नंबर बताया है और देखिए आपसे बता रहे हैं हम कि कॉल करें, एक कॉल हम तक आ भी गया है। हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम, परिचय दें अपना, तारुफ कराएं।
2: जी मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, सिवा चतरिया से बोल रहे हैं।
0: हाशिम साहब स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, इस्तकबाल आपका, कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोग भी बखैर होंगे।
0: हाँ बिल्कुल, मालिक की कृपा बनी हुई है और हम चाहते हैं कि जैसी कृपा हम पे है वैसी सब पे रहे, कि हमेशा मस्त रहें। जी
2: इंशाल्लाह।
0: और क्या हाल चाल है आस पास का? काम धंधा आपका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: हाँ सर, काम तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है,
0: बढ़िया चल रहा है।
2: हाँ जी जी
0: जी,
2: आप लोग की दुआ है
0: जी। फरमाइश बताएं।
2: फरमाइश ये है, कुर्बानी फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, कुर्बानी कुर्बानी, ये अनगढ़ और किशोर साहब की आवाज में है,
0: अजीज नाजा भी हैं और साथी भी हैं जी, फिरोज फिरोज खान साहब की बनाई हुई फिल्म।
2: बहुत मशहूर हुआ था, काशी में शायद बना था ये
0: जी। मैं तो हाँ, मैं बस जब बच्चा था तब से सुनता आ रहा था, अब कब की फिल्म थी मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा, तो वो इसमें एक और खास बात थी कि नाजिया हसन नामक एक गायिका थी जो गाना गाई थी आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, और वो बहुत ही कम उम्र में, वो बहुत ही कम उम्र में कैंसर से, शायद ब्लड कैंसर हुआ था, शायद 25 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। काफ़ी अच्छा गाई थी। हाँ तो ये जानते हैं हम, चूँकि हम फिल्में कम देखते हैं लेकिन पढ़ते ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मुझे जी ये मालूमात है। जी जी, तो और वैसे भी आपको बता दें कि नाम के मुनासिबत से ये है कि 3 दिवसीय त्यौहार चल रहा है ईद उल अज़हा का, तो उसकी हम तमाम श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, और इसका उद्देश्य, इस त्यौहार का उद्देश्य यही है कि हर अच्छे काम के लिए आप त्याग करें, बलिदान दें। हाँ, उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी अच्छा काम है हम करें, और उसके लिए अगर त्याग और बलिदान की ज़रूरत हो जीवन में कभी भी कहीं भी, तो हम अवश्य दें, और वो त्याग और बलिदान अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए हमें कब ज़रूरत पड़ जाएगी देने की कहा नहीं जा सकता, और वो हमें देना चाहिए। तो यही हमें त्यौहार सिखाता है, बलिदान का सीख, बलिदान की सीख देता है, सबक देता है। तो आपके लिए हम पहुंचा रहे हैं सिमरा चतरिया में ये गाना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। आपने कॉल किया, आपका बहुत

0: मसलाम तारुफ अपना
1: आप बोल
0: कराएं।
1: रहे हैं, कादिर अली बोल रहे हैं, नाहर मंटला, जिला मधुबनी, बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: जी कादिर भाई, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं सर, अपना बताइए।
0: हाँ, मालिक का करम है, फरमाइश बता दें।
1: आए महबूब की मेहंदी का गाना सुना दीजिए।
0: जा
1: जाने की वो लोग मोहब्बत क्या करते हैं।
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए नाहर मंटोला में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।
1: सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्कार सज्जाद भाई, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, मालिक की कृपा है। आप अपना पहले परिचय दे दें श्रीमान जी।
1: मैं मिथिलेश कामत बोल रहा हूँ, ग्राम भैया पट्टी बासोपट्टी जिला मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी मिथिलेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। और सब बढ़िया एकदम मस्ती?
1: जी जी, आपको भी तहे दिल से स्वागत है सर।
0: चलिए धन्यवाद।
1: पर्व हुआ
0: जी जी जी,
1: सभी को
0: पर्व तो

0: एकदम मस्ती
1: जी जी आप आपको भी तहे दिल से स्वागत है सर।
0: चलिए धन्यवाद।
1: पर्व हुआ था।
0: जी जी जी
1: सभी को
0: पर्व तो जी पर्व तो चल ही रहा है। 3 दिवसीय पर्व होता है और तीनों एक बराबर मनाया जाता है। खाली प्रथम दिन में एक होता है कि नमाज होती है, वरना 3 दिन चलता है और कल भी ये त्यौहार है। तो शुभकामनाएं हैं आकाशवाणी दरभंगा परिवार की ओर से तमाम श्रोताओं को इस पर्व की। और ये पर्व त्याग और बलिदान का प्रतीक है और जीवन में हमें अपने आप को हर समय अपने लिए, घर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए, यही सीख देता है ये त्यौहार। मिथिलेश जी तो
1: जी जी जी तो और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सब। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों कहा जाए भाई, यहाँ तो कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम, जितने भी एक परिवार है, संसार ही एक परिवार समान है। तो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो सब जो है ना हमारे जो है वसुधैव कुटुम्बकम जो कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी तो कहा गया है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग कष्टों से दूर रहें, बीमारी न हो किन्हीं को, किसी तरह का कोई तकलीफ, किसी तरह की परेशानी न हो। तो ये सब चीज़ तो हमारे यहाँ कह दिया गया है, अतीत में कह दिया गया है, प्राचीन काल में कह दिया गया है, हम सब तो उसको फॉलो करते हैं। नहीं जी और बाकी जो है ना ये सब हम क्या बोलें, आपको क्या बताएं। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के लोग उसको खून देते हैं और हम ही लोग डोनेट करते हैं जब ब्लड, तो ये थोड़े जानते हैं कि ये ब्लड किन के पास जा रहा है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें
1: हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई सब जो है सब हम लोग भाई भाई हैं सर।
0: बिल्कुल, उसमें बौद्ध और जैन को भी जोड़ दें, पारसियों को जोड़ दें, तो कुल मिला करके ढेर सारे जात और संप्रदाय के लोग हैं, ढेर सारी जात के, और सब हमारे अपने हैं, सब भारतीय हैं, है ना
1: जी जी,
0: सब
1: जी
0: हमारे जी अपने हैं। तो आज फरमाइश बता दीजिए
1: सर। फिल्म का नाम है पाकीज़ा और गाने का बोल है चलते चलते यू ही कोई मिल गया। लता जी का आवाज में है सर, बहुत अच्छा फिल्म है,
0: बहुत ही अच्छा गाना भी है, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। जी जी बहुत अच्छा ये गाना है, मुझे भी काफी पसंद है। चलिए आपके माध्यम से हम भी सुनते हैं। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुनिए ये गाना।
1: नमस्ते नमस्कार, गुड नाइट सर।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: परिचय दें अपना।
1: राजकुमार शाह, ग्राम परकोली, प्रखंड बेनीपट्टी, जिला मधुबनी से।
0: राजकुमार शाह जी, स्वागत कार्यक्रम में। कैसे हैं भाई?
1: जी जी ठीक है सर, आप अपना बताइए।
0: मालिक की कृपा, चाहते हैं कि आप तमाम पे भी वैसे ही कृपा बनी रहे।
1: जी, मालिक की कृपा तो हर आदमी के ऊपर है, बिना मालिक की कृपा से तो कोई निश्वास रह सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइश बताएं राजकुमार जी।
1: अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत में चाहते रफी साहब का आवाज में।
0: फिल्म का नाम है रात के अंधेरे में।
1: जी जी, याद नहीं मुझे रहता है, था इसीलिए बोल दीजिए।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं ये गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभरात्रि, सुनिए ये गाना।
1: शुभरात्रि, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
1: जी। हेलो आकाशवाणी, प्रणाम सर।
0: प्रणाम प्रणाम, परिचय दें आप।
1: जी हम बोल रहे हैं संतोष कुमार मुखिया, बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3, प्रखंड पंडोल, जिला मधुबनी, बिहार से मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: संतोष जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं?
1: जी सर सब कुछ ठीक हूँ और आशा करता हूँ जो हमारे सर भी सब परिवार स्वस्थ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। फरमाइश बता दें संतोष जी।
1: आज हमको सुना दीजिए कोरा कागज फिल्म का गीत, गाने का बोल है मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
0: पहुंचा रहे हैं आपके लिए किशोर कुमार का गाया हुआ ये प्यारा सा गाना। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: प्रणाम सर।
0: प्रणाम।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार। परिचय
1: नमस्कार श्रीमान,
0: दें श्रीमान जी।
1: मैं राम कुमार शाह सिमरिया धुंधी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ
0: जी। राम कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं
1: जी? सब जी, आप लोगों की दुआ है, सर से छुपा है, सानंद हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सानंद ऐसे ही रहना चाहिए सभी को। हाँ
1: जी सब,
0: और फरमाइश बताएं।
1: फरमाइश है पाकिजा का, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे।
0: लता जी का गाया हुआ
1: जी सर,
0: जी आपके लिए पहुंचा रहे हैं ये गाना सिमरिया भिंडी पंचायत में। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: सर जी नमस्कार।
0: अरे क्या लहजा है, क्या अंदाज है, बस पहचान लिया मैंने। मैं भी दिमाग में कुछ भाग गुणा करता हूँ और पता चला लेता हूँ कि मांगीलाल चंदेल जी।
1: आप गुणा करते हो तो गुणा बिल्कुल आपका फिट हो जाता है, आप बिल्कुल पहचान लेते हो
0: जी। तो मांगीलाल चंदेल जी गुणा में अभी बताइए क्या सब हाल चाल है। सब
1: गुणा में बढ़िया हाल चाल है सर जी, धूप पड़ रही है लेकिन अभी इस समय 11 बज रहे हैं तो अभी एक तूफान आया है। हाँ तभी 11 बजे तूफान आया है एक, हम मतलब बाहर सो रहे थे लेकिन अंदर हो गए, बूंदाबांदी चल रही है और बहुत जोरदार हवा चल रही है।
0: अच्छा तो ये मौसम बिहार का भी ऐसा ही मौसम है लगभग।
1: हाँ बिहार का भी होगा, मेरे हिसाब से पूरे भारत में कुछ आजकल से मौसम बिगड़ा हुआ है
0: जी जी,
1: तूफान बारिश हो रहा है
0: और उत्तर भारत में विशेष रूप से।
1: जी
0: जी तो फरमाइश बता दें आज।
1: फिल्म का नाम तो जंगली है और गाने की बोल है या कुछ देना ऐसा ही करके कुछ गाना है मतलब।
0: जंगली नहीं, वो तो गाइड फिल्म का, वो तो गाइड फिल्म का है मांगीलाल जी, पिया तो से नैना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, जंगली जंगली फिल्म का जंगली फिल्म है जी, मैं बता रहा हूँ।
0: नहीं आप जो बता रहे हैं जंगली, वो जंगली नहीं, गाइड फिल्म का ये गाना है। गाइड।
1: अच्छा अच्छा गाइड का है
0: जी, तो सुना दें आप तक पहुँचाए हम ये गाइड फिल्म का गाना।
1: गाइड फिल्म का गाना ये पिया तो से नैना, ये आप लगा दीजिए।
0: चलिए आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी, फिर कॉल कीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार सर जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते भैया।
0: नमस्ते नमस्ते बहन, परिचय दे दें। जहाँ तक हमको जहन में आ रहा है कि आप मुजफ्फरपुर से बात कर रही हैं।
1: हाँ, मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं हम। मेरा नाम सोनी हुआ।
0: अच्छा, सोनी जी। हाँ, अंदाज़ा लगा लिया था हमने। और कैसी हैं?
1: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे?
0: हाँ, मालिक की कृपा है, बस एकदम मस्ती में है।
1: अभी तो आप लोगों का पर्व चल रहा है, मस्ती चलबे करेगा नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं देते हैं जी।
1: हाँ, चलिए।
0: आ,
1: तो मेरा फरमाइश है और सुना दीजिए। चांद
0: आ,
1: के पास जो सितारे हैं।
0: लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ बहुत प्यारा गाना है। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने जी। इस फिल्म का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। और सब बढ़िया है ना बाबू? ठीक है आपका?
1: हाँ बाबू ठीक है। अभी गर्मी छुट्टी मिला हुआ, बहुत मस्ती कर रहा है।
0: चलिए, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुनिए ये गाना मुजफ्फरपुर में।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम। अपना परिचय देते हुए फरमाइश बता दें, क्योंकि समय काफ़ी कम है। जी, आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट होके आ रही है। अकरम साहब बोल रहे हैं मुबारकपुर से, भाया कोठमन्ना। जी जी, गाना गाना बता दें।
1: गाना वो है रफी साहब की आवाज में, तान मेरे दिल को तुम्हारा है दोस्तों,
0: ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों,
1: मारा है दोस्तों।
0: जी, फिल्म गबन का ये गाना है। तो पहुंचा रहे हैं आपके लिए भाया कोठमन्ना दिल्ली में। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, सुनिए ये गाना।

0: कह रहा है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। तो आपको बता दें, आज जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा उसके लिए प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक थे असद दाऊद, और मैं था आपके साथ सज्जाद अहमद खान। अगले अंक में फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए चलते चलते मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूँ किसी के हक में बुरा न हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूँ किसी के हक में बुरा न हो। कहीं और हो न ये हादसा, कहीं और हो न ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा न हो। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: हेलो आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा।

होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।